मीट भी 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जून 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आज की हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी आदरणीय श्रोताओं का इस प्रातःकालीन सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही हम उन सभी श्रोताओं का भी विशेष रूप से अभिनंदन करते हैं जो हमारे इस प्रसारण को न्यूज़ ऑन EIR ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं।

0: मिड वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजना

0: योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी समाचारों का अनुप्रसारण हमारी दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं देशगान समूह स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे मातृभूमि की वंदना करता हुआ ये देश गान। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं ये भक्ति गीत। श्रोताओं, भगवान जिसे भी मिला है प्रेम के मार्ग से ही मिला है। भक्ति का सार भी प्रेम है और आध्यात्मिकता का मूल भी प्रेम ही है। आइए हम भी अपने हृदय में प्रेम, करुणा, दया और सद्भाव के दीप जलाएं।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये भजन। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं डीवी पलस्कर की आवाज में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और साथियों की आवाज़ों में ये भक्ति गीत। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं संतोषी माता की आरती।

0: अभी आप सुन रहे थे संतोषी माता की आरती। आवाज़ें थीं अनुराधा पौडवाल और साथियों की। इस आरती के साथ ही भक्ति संगीत का आराधना कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मिडी वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। इस कार्यक्रम में आज का शीर्षक है रिश्तों में समझदारी। वाचन और संकलन है कल्पना सिन्हा का।
1: रिश्ते हमारे जीवन की अनमोल पूंजी होते हैं। इंसान धन, सफलता और पूंजी तो अकेले हासिल कर सकता है, लेकिन सच्ची खुशी केवल अच्छे रिश्तों से मिल

मिलती है। रिश्तों की मजबूती केवल प्रेम से नहीं बल्कि समझदारी, धैर्य, सम्मान और विश्वास से बनी रहती है। जिस रिश्ते में समझदारी होती है वहाँ छोटी छोटी परेशानियाँ भी बड़ी नहीं बन पाती। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कई बार रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलत फहमियों से टूटने लगते हैं। एक कठोर शब्द, बिना सोचे कही गई बात या किसी की भावनाओं को नज़रअंदाज करना रिश्तों में

0: छोटी छोटी गलत फहमियों से टूटने लगते हैं। एक कठोर शब्द, बिना सोचे कही गई बात या किसी की भावनाओं को नज़रअंदाज करना रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। इसलिए समझदारी यह नहीं कि हम हर बात में जीत जाएं, बल्कि समझदारी यह है कि हम रिश्तों को जीतने दें। घर में माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहनों का संबंध हो या दोस्ती का रिश्ता हो, हर रिश्ते में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, लेकिन हम उसकी परिस्थितियों और भावनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं करते। रिश्तों की खूबसूरती मैं ही हूँ में नहीं है, बल्कि रिश्तों की खूबसूरती हम साथ साथ हैं में होती है। जब घर का कोई एक सदस्य गुस्से में हो, तब यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी गुस्से में जवाब दे तो बात बढ़ जाती है। लेकिन यदि कोई एक शांत रहकर परिस्थिति को संभाल ले तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। यही समझदारी रिश्तों को टूटने से बचाती है। कभी कभी चुप रह जाना भी बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है। रिश्तों में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सम्मान की। प्रेम कम हो जाए तो भी रिश्ता चल सकता है, लेकिन सम्मान खत्म हो जाए तो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। किसी की बात ध्यान से सुनना, उसकी भावनाओं की कद्र करना, किसी को समय देना, ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को गहराई देती हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे, जबकि रिश्तों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत समय और अपनेपन की ही होती है। समझदारी का अर्थ यह भी है कि हम हर बात को दिल पर ना लें। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई जल्दी गुस्सा करता है, कोई कम बोलता है, कोई अपनी परेशानी व्यक्त नहीं कर पाता। यदि हम हर व्यवहार के पीछे छिपी भावना को समझने लगे तो शिकायत कम और अपनापन ज्यादा महसूस होगा। दैनिक जीवन में अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को करीब लाने के बजाय दूर कर दिया है। परिवार एक ही कमरे में बैठा होता है, लेकिन बातचीत कम और मोबाइल पर ध्यान ज्यादा होता है। रिश्तों में समझदारी यह है कि हम तकनीक का उपयोग तो करें, लेकिन अपने अपनों से संवाद बनाए रखें। कई बार अहंकार भी हमारे रिश्तों में दूरी पैदा करता है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए अपनों के साथ प्रेम और मधुरता बनाए रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। एक पेड़ की तरह रिश्तों को भी समय समय पर देखभाल की ज़रूरत होती है। यदि उन्हें प्रेम, विश्वास और समझदारी का पानी मिलता रहे तो वे हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन यदि उपेक्षा और कटुता बढ़ जाए तो सबसे मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूटने लगता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि रिश्तों में समझदारी जीवन को सुंदर और सुखद बना देती है। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अच्छे रिश्ते ही तो होते हैं। रिश्ते मोती की तरह होते हैं। यदि कोई मोती टूटकर गिर भी जाए तो उसे झुककर उठा लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते दोबारा आसानी से कभी नहीं मिलते।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज का शीर्षक था रिश्तों में समझदारी। वाचन और संकलन था कल्पना सिन्हा का। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन। इसमें आज हम आपको 81वां भाग सुनवा रहे हैं। मुख्य गायन स्वर शोभा जोशी का है। संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्रीराम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। लीजिए सुनिए खेती की बात। जानकारी का विषय है पशु आहार।
1: गर्मियों के मौसम में पशुओं की भूख कम हो जाती है और प्यास बढ़ जाती है। इसके लिए आहार में पोषण प्रबंधन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रीष्मकाल में हरे चारे की अधिकता सूखे चारे की तुलना में अधिक होनी चाहिए,

0: कि इसमें 70 से 90% पानी, जो शरीर में नमी बनाए रखता है। मक्का, लोबिया, चरी और ज्वार जैसे हरे चारे उपयुक्त हैं। पशुओं को आहार देने का समय भी निश्चित होना चाहिए। दोपहर की तेज गर्मी में चारा देने से बचना चाहिए। पशुओं को केवल सुबह जल्दी और शाम को देर से अर्थात ठंडे समय में चारा खिलाना चाहिए। पशुओं को आहार भिगोकर देना चाहिए। भूसे और दाने, चूनी, चोकर को खिलाने से कम 1 घंटा पहले पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इससे आहार ठंडा हो जाता है और पाचन में आसानी होती है। ऊर्जा और खनिज लवण की अधिकता होनी चाहिए। गर्मी में तनाव को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स युक्त ऊर्जावर्धक आहार और खनिज मिश्रण देना चाहिए। पोटेशियम युक्त खनिज मिश्रण गर्मियों में विशेष रूप से लाभदायक होते हैं। पशुओं को दिन में कम से कम 3 से 4 बार स्वच्छ और ताजा पानी पिलाना चाहिए। संभव हो तो पानी को छायादार स्थान पर रखें, जिससे पानी ठंडा रहे और पशुओं को पीने में अच्छा लगे। एक आदर्श और संतुलित आहार में अनाज, जिसमें मक्का, जौ, गेहूं या बाजरा हो, खली, जिसमें सरसों, मूंगफली या बिनौला की खली हो, चोकर या चूरी, गेहूं का चोकर और चने या दालों की चूरी, नमक, आहार में पर्याप्त मात्रा में साधारण नमक अवश्य मिलाना चाहिए। दुधारू पशुओं, गाय और भैंस में गर्मियों के दौरान दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए पोषण और प्रबंधन में बदलाव करना अनिवार्य है। गर्मियों में दूध बढ़ाने के लिए घर पर तैयार दलिया बहुत प्रभावी होता है। 1 से 1.5 किलोग्राम मोटा पिसा हुआ गेहूं, 50 से 100 ग्राम सौंफ ठंडी तासीर हेतु और 100 ग्राम मिश्री। गेहूं को अच्छी तरह पकाकर दलिया बना लें। पकाने के बाद इसमें सौंफ और मिश्री मिलाएं। इसे ठंडा करके खिलाएं। बेहतर परिणाम के लिए इसमें 100 मिलीग्राम प्रोटीन सी लिक्विड भी मिलाया जा सकता है। दूध उत्पादन के आधार पर दाना अवश्य देना चाहिए। गाय के लिए प्रतिदिन 2.5 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो अतिरिक्त दाना मिश्रण देना चाहिए। भैंस के लिए प्रति 2 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना मिश्रण देना आवश्यक है। भैंस को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में 35% अनाज, मक्का, जौ, 32% खली, सरसों या बिनौला और बाकी चोकर या चोरी शामिल करें। दूध की मात्रा और गुणवत्ता सुधारने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग भी कर सकते हैं। शतावरी और अश्वगंधा, ये जड़ी बूटियां हार्मोनल संतुलन बनाए रखती हैं और दूध उत्पादन को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार सफेद जीरा, 500 ग्राम जीरा और 500 ग्राम सौंफ का मिश्रण पाचन और दूध बढ़ाने में सहायक होता है। गर्मियों में रूमन के स्वास्थ्य के लिए 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा खिलाने से पाचन ठीक रहता है और फैट कम नहीं होता। दाना हमेशा दिन में 2 बार समय अनुसार दें। पशु के आहार में 15 से 20 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य शामिल करें। दुधारू पशुओं को प्रतिदिन 60 से 80 लीटर साफ और ठंडा पानी पिलाना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। जानकारी का विषय था पशु आहार।

0: अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों कार्यक्रम गूंजे जंगल। सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम। ऑल इंडिया रेडियो के उपलब्धि 90 वर्ष पर विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ के लोक सुर का प्रसारण। इसे हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे परिक्रमा कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे बातों और गीतों कार्यक्रम गुंजन। 10 बजे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11:05 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आपकी पसंद। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम चयन। दिन में 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:10 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर गोसाइन। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा महिला गृह उद्योग, गर्मी से बचें। साथ ही सुनेंगे घरेलू नुस्खे, लोकगीत, चर्चा होगी जल संरक्षण पर। दिन में 1:40 पर आप सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम। दोपहर 2:30 पर आप सुनेगा गीत गंधा कार्यक्रम। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 पर आप सुनेगा युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे युवा सोच, इंद्रधनुष और फिल्म संगीत क्रम। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। लोकगीतों कार्यक्रम गोदली आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। शाम 6:30 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें आज आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, आजकल, आजकल किसान, लोकगीत, मंडी भाव, मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श और आजकल सवाल। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। रात्रि 9:15 पर सुनेगा चित्रपट संगीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सूर्यामनी। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे मन भावन कार्यक्रम। यद्यपि श्रोताओं हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी मिडवीप और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च संबंधान इतोपि सुदृढीकरणाय वार्तालापः भविष्यति। वार्तालापावधौ म्यांमार भारतयोः मध्ये सुरक्षा संपर्कौ च समेत्य सम्पूर्णेषु विभिन्नेषु विषयेषु चर्चाः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः गतरात्रौ दिल्ल्याम् अतिथिगणमान्यैः सह मेलनं विहितवान्। अवधेयं यत् म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः शनिवासरे भारतस्य 5-दिवसीय यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्तवान् आसीत्। म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतेः भारतस्य आधिकारिक यात्रायाः कारणात् उभयोः देशयोः मध्ये बहुपक्षीय सम्बन्धः इतोपि सुदृढः भविष्यति इत्यपेक्षास्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रकृति संरक्षणे, स्थानीय समाह्वानानां निराकरणे, अन्य सामाजिक कार्येषु च तेषां प्रेरक उपक्रमाणां उपलब्ध

0: विधीनां च विषये अनेकेषां नागरिकाणाम् उत्कृष्टयोगदानाय प्रशंसा कृता। आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखण्ड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुं उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एच.डी. देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीतसिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्तः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। पञ्चाशदधिक ऊनविंशतिशततमात् वर्षात् सप्तत्यधिक ऊनविंशतिशततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं पञ्चस्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता। इति वार्ताः।
2: अभी संस्कृत समाचारों का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। मीडियो वीब और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत में प्रभुनाथ वैष्णव और साथियों गाया ये गणेश वंदना गीत।

गूंजी जंगल कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सादरी लोकगीत में ललित लकड़ा और साथियों का गाया ये भजन।

गूंजे जंगल के कार्यक्रम के अंत में सुनिए सरगुजिया लोकगीत में बाबूदास मानिकपुरी और साथियों का आया वहीं हरी गीत।

इस गीत के साथ ही गूंजी जंगल कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
0: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।

नमस्कार सरगुजा की आज के अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में मैं हूं आप सभी के साथ तरुण। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको देते हैं सूचना जो हम कार्यक्रम से संबंधित हमेशा आपको देते हैं। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके

उपलब्ध है जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना आपकी सुरक्षा के लिए है। साथियों, संगीत जगत की एक महान और सम्मानित गायिका सुमन कल्याणपुर जी अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी आवाज में एक अनोखी मिठास, अद्भुत कोमलता और ऐसी कशिश थी जो आज भी श्रोताओं के मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके गीत संगीत प्रेमियों के हृदय में सदैव वो जीवित रहेंगी। पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आइए आपको सुनवाते हैं साथी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मुकेश की।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खरखर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब?
1: मतलब अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
3: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
4: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नहीं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शासन द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU निष्पादित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत NHM के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है, 6 लाख का निशुल्क लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराया जाएगा। यह बीमा कवर सामान्य मृत्यु की स्थिति में प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था के लिए राज्य सरकार या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। साथ ही बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित समस्त सुविधाएं कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस पहल से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हजारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का अतिरिक्त लाभ मिलेगा तथा उनके परिवार को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं दिल एक मंदिर फिल्म का ये गीत, आवाज सुमन कल्याणपुर की है।

नमस्कार सरोजा के आज के इस अंक में आप ये सूचना सुनिए। संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर द्वारा विधि विभाग के अंतर्गत एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार यह पाठ्यक्रम बाल अधिकारों के संरक्षण संवर्धन एवं उनसे संबंधित विधिक प्रावधानों के अध्ययन के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम का प्रस्तावित अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम संरचना विश्वविद्यालय की विधि विषयक अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात विद्या परिषद एवं कार्य परिषद से स्वीकृति हो चुके हैं। पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु कुल 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन की प्रक्रिया 29 मई 2026 से प्रारंभ कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि वर्तमान समय में बाल अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित विषयों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों तथा बाल संरक्षण

शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। प्रवेश एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अवलोकन कर सकते हैं। आइए इस सूचना के बाद आपको सुनवाते हैं गीत फिल्म का ये गीत, आवाज सुमन कल्याणपुर की।

अमृतधारा जलप्रपात में हाल ही में हुई दुखद घटना के बाद जिला प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए त्वरित कदम उठाए हैं। प्रशासन द्वारा जलप्रपात क्षेत्र के संवेदनशील एवं दुर्घटना संभावित स्थानों पर चेतावनी एवं सुरक्षा सूचना बोर्ड स्थापित किए गए हैं ताकि पर्यटक सुरक्षित रहें।

क्षति न हो। प्रशासन की पहल पर अमृतधारा परिसर में ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां फिसलन या गहराई के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन स्थानों पर स्पष्ट रूप से चेतावनी संदेश प्रदर्शित किए गए हैं जिनमें पर्यटकों से सावधानी बरतने और प्रतिबंधित क्षेत्रों में न जाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, चेतावनी बोर्डों पर अंकित संदेशों को गंभीरता से लें और किसी भी जोखिमपूर्ण गतिविधि से बचें। प्रशासन का उद्देश्य अमृत धारा को सुरक्षित, व्यवस्थित और पर्यटक अनुकूल स्थल के रूप में विकसित करना है ताकि आने वाले लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आमद सुरक्षित वातावरण में ले सकें। तो साथियों, आप सबको भी इस सूचना पर विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप अमृत धारा जलप्रपात के पास जाएं तो इन संदेशों को पढ़ें और वहां जाने से बचें जहां उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया है, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। कई बार क्या होता है कि मोबाइल से सेल्फी लेने के चक्कर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं और अधिक गहराई में भी व्यक्तियों के डूबने की आशंका पानी में बनी रहती है। तो ऐसे में हम सबको ख्याल रखना है कि ऐसे स्थानों पर जाने से बचना है और उन सूचनाओं पर विशेष ध्यान देना है जहां चेतावनी दी गई है। आइए इस सूचना के बाद सुनते हैं ये गीत। फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती। आवाजें हैं सुमन कल्याणपुर और मुकेश की।

0: नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में बस इतना ही। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका रेडियो दोस्त तरुण।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
0: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियो वेब और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में पहले समाचार प्रभात, फिर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम

0: परिस्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2015 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश

0: बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
2: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है।

0: भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

चरक भिक्खवे चारिक, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अदथाय हिताय सुखाय देव मनुस्सान। भगवान बुद्ध की इस अमर वाणी के साथ आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक सांस्कृतिक धरोहरों पर केंद्रित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में आप सभी सुधीजनों का हम अभिवादन करते हैं। नमस्कार। श्रोताओं, आज के अंक को हमने सजाया है छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गाथा पंडवानी से, और साथ ही सुनेंगे बस्तर का भद्रा नाट गीत। लेकिन इससे पहले आकाशवाणी से जुड़े कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। आकाशवाणी के प्रभाव का यशोगान करते हुए जनसंचार विशेषज्ञ डॉक्टर विल्वर श्रम लिखते हैं कि प्रभावी जनसंचार माध्यम देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतएव मुक्त और समुचित सूचना उपलब्ध कराना मात्र

ही जन संचार माध्यमों का अंतिम ध्येय नहीं है, बल्कि इच्छित सामाजिक परिवर्तन अंतिम लक्ष्य है। वास्तव में यही विचारों की ताकत है। श्रोता साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप का बेहद लोकप्रिय रेडियो चैनल है विविध भारती। इसका सुरुचिपूर्ण प्रसारण हमें समय के उस पार ले जाता है, जहां स्मृतियां फिर से जी उठती हैं। आकाशवाणी की यात्रा में एक रोमांचक पड़ाव तब आया जब 3 अक्टूबर

उस पार ले जाता है जहां स्मृतियां फिर से जी उठती हैं। आकाशवाणी की यात्रा में एक रोमांचक पड़ाव तब आया जब 3 अक्टूबर सन 1957 सुबह 10:13 पर शॉर्टवेव 19 और 25 मीटर बैंड पर आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती की किलकारियां गूंजने लगी। ये विविध भारती है आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। इस उद्घोषणा से पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियों ने शुभकामना के फूल बरसाए थे। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारी आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती।

संस्कृत भारती की परिकल्पना को सन 1957 में साकार करने वाली हस्तियों में तात्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर बी.वी. केसकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में तात्कालीन सचिव श्री पी.एम. लाठ और आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक श्री जगदीश चंद्र माथुर रहे। विविध भारती का शुरुआती स्वरूप ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम अर्थात अखिल भारतीय विविध रंगी कार्यक्रमों का था। इस सेवा को विविध भारती नाम दिया कला एवं साहित्य मनीषी पंडित नरेंद्र शर्मा ने। विविध भारती की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विषय में विविध भारती के चीफ प्रोड्यूसर रहे पंडित नरेंद्र शर्मा जी कहते थे, हमारे इतने बड़े संस्थान में जिसको कि आकाशवाणी कहा जाता था, अनेक ऐसे कार्यक्रम थे जो कि ज्यादातर निष्णांत बुद्धिजीवी श्रोताओं के लिए थे। अधिक संख्या में अखिल भारतीय वो श्रोता हैं जिसे हम और किसी बहुत अच्छे शब्द के अभाव में कहेंगे सामान्य श्रोता, अंग्रेजी में कहें तो ले लिसनर। सामान्य श्रोताओं की जो आवश्यकताएं थीं, उनमें विविधता भी होनी चाहिए और भारतीयता भी। इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध भारती उपयुक्त सिद्ध हुआ और इस प्रकार प्रसारण आरंभ हुआ। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विविध भारती के मुंबई केंद्र से पहली उद्घोषणा की शील वर्मा ने। विविध भारती पर पहला प्रसार गीत मन्ना डे के स्वर में प्रसारित हुआ, नाच रे मयूरा। रचयिता थी पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीतकार अनिल विश्वास। सुप्रसिद्ध कार्यक्रम हवा महल का प्रसारण 20 अक्टूबर सन 1957 से आरंभ हुआ। प्रथम प्रसारित हवा महल के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा ने विशेष संगीत नाटिका तैयार की थी महारास, और तब से अपने विविध कार्यक्रमों वंदनवार, लोक संगीत, गीतों भरी कहानी, उदयगान, इंद्रधनुष, राग रंग, मंजूषा, फौजी भाइयों का विशेष जयमाला जैसे कार्यक्रमों से आज भी देश की धड़कन बनी हुई है आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती।

एनी पंथी गौरा जमारा जैसे अनेक लोक विधाएं छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक बगिया के महकते हुए फूल हैं। उनमें सर्वोपरि सुगंधित पुष्प का नाम है पंडवानी।

और आइए अब आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के सुरीले संगीत संसार में, जहां गूंजते हैं छत्तीसगढ़ के लोक सुर।

समय का पहिया कभी किसी के लिए रुका नहीं, आते हैं चले जाते हैं, पर मनुष्य जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो कथा की शक्ल में शेष रह जाती हैं। पंडवानी महाभारत की ऐसी ही कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, जो आम छत्तीसगढ़ी लोगों की सहज सरल जीवन शैली से, उनके भोले भाले हृदय की धड़कनों से जुड़कर संगीत के अविराम स्रोत सा बहता रहता है। नाचा कर्मा ददरिया सुआ बांस गीत चंदन

पंडवानी छत्तीसगढ़ अंचल के मनोरंजन का पारंपरिक साधन ही नहीं, श्रद्धा भक्ति शौर्य और पराक्रम के प्रति ललक की मोहक अभिव्यक्ति भी है।

नहीं होए तो फिर राज सुना होगे भीष्म चिंता के मारे घायल। सतवती कहे बेटा मोरे सेठी तय परन करे हस, अब मैं तोला आदेश देता हूँ, मैं तोला छुट्टी देवा था तैसा।

0: एक मोर कहना मान।
1: अच्छा।
0: व्यास नारायण ला जल्द से जल्द बुला के ये घर में ले आ।
1: हाँ?
0: इस पितामह

पंडवानी स्वांग और संगीत का ऐसा मनोरम संगम है जहां महाभारत के अमर पात्रों की शौर्य गाथा हिलोरे लेती है। महर्षि व्यास द्वारा वर्णित और भगवान गणेश द्वारा अंकित महाभारत केवल युद्ध कथा ही नहीं अपितु समस्त मानवीय मूल्यों, आवेगों, मनोभावों और सबसे ऊपर मनुष्य की आदिम वृत्तियों और कामनाओं का सूक्ष्म चित्रण है। पंडवानी वस्तुतः महाभारत की शाश्वत कथा का छत्तीसगढ़ी संस्करण है। छत्तीसगढ़ी बोली में कितना माधुर्य और विस्तार है। जीवन के सूक्ष्म और गूढ़

प्रीतम भावों को अभिव्यक्त करने की कितनी अपार क्षमता है, ये पंडवानी को प्रत्यक्ष देखकर सुनकर ही समझा जा सकता है। पंडवानी की प्रस्तुति के लिए किसी विशेष पर्व त्योहार या अवसर की अनिवार्यता नहीं है। एक रात से लेकर कई रातों तक लगातार चलने वाली पंडवानी बैठकर भी गाई जाती है और खड़े होकर भी तथा घुटनों का सहारा लेकर भी। ये एक ऐसा एकल अभिनय है जिसमें अंग संचालन, भावाभिव्यक्ति, स्वरों के तीव्र आरोह अवरोह के साथ साथ संगीत की मधुर स्वर लहरियां श्रोताओं को सम्मोहन पाश में बांधी रखती हैं। तंबूरा पंडवानी का अभिन्न संगी और सहचर है। इसकी मंचीय प्रस्तुति में साथ बैठे हुंकारू देने वाले रागी की भूमिका कथा को लयात्मकता, गतिशीलता देने और रोचकता को बराबर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

0: और सारी धन संपत्ति हारे के बाद में पांचों भाई पांडव 12 साल वनवास 1 साल अज्ञात वनवास भेज दी संग में द्रौपदी और पांचों भाई पांडव सहित।
1: अच्छा?
0: कहाँ चली कामयक बन के जंगल में
1: जी।
0: पांचों ये पांडव है कैसे।

0: जो भाई पांडव ना
1: अच्छा
0: ये झाड़ के नीचे में बैठा दी।
1: हाँ जी।
0: अपन पत्नी द्रौपदी के साथ में पांचों भाई पांडव बैठे रहे।
1: हाँ जी।
0: उही बीच में
1: अच्छा।
0: उही जंगल में एक अच्छा। कामी नाम के राक्षस रहे।
1: अच्छा।
0: वो कामी नाम के राक्षस
1: अच्छा
0: कथे कैसे का कथे मनखैन मनखैन बोला सुगंध आवत है भाई।
1: हाँ जी।
0: अवश्य कोई जंगल में आए भाई।
1: हाँ जी।
0: ऐसे कई के पर रूप ला राजा के भेष बना के।
1: अच्छा।
0: और चली इस कहा जहाँ पांचों भाई पांडव बैठे रहा है।
1: अच्छा।
0: ये दे रहेगा थे ना

छत्तीसगढ़ी पंडवानी में गायन की दो शाखाएं प्रचलित हैं, कपालिक और वेदमती शैली। इन दोनों शैलियों में सबसे ज्यादा प्रचलित शैली है कपालिक, जो शास्त्रीय कथा को लोक रंग के नए परिधान देकर पूरे आत्मविश्वास के

साथ हमारे सामने लाती है। इस शाखा के गायकों ने समयानुकूल लोक रुचि के वाद्य यंत्रों का समावेश कर इसे रुचिकर बनाया है और गायकी की नई आक्रामक शैली का आविष्कार किया है। पंडवानी की ये आकर्षक शैली गायन के साथ आंशिक नृत्य नाटक का भी आनंद देने में पूर्णतः सक्षम है। इस विधा में संगीत, भावाभिनय और कथा व्याख्या तीनों का अनुपातिक समिश्रित सौंदर्य सचमुच सम्मोहन पाश में बांध लेता है श्रोताओं को। इस शैली की सबसे प्रख्यात कलाकार हैं विदुषी पद्म विभूषण तीजनबाई। पंडवानी की दूसरी शैली है वेदमती, जिसका अर्थ है शास्त्र पर आधारित कथा शैली, अर्थात महाभारत कथा पर आधारित शैली। छत्तीसगढ़ के पंडवानी लोक कलाकारों ने इसे छत्तीसगढ़ की सीमा से आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में स्थापित किया है। इन प्रमुख कलाकारों में पंडवानी के पितामह स्वर्गीय झाड़ू रामजी देवांगन, पूना रामजी निषाद, पद्म विभूषण विदुषी तीजनबाई, ऋतु वर्मा, विदुषी उषाबाई बार्ले, शांतिबाई चेलक आदि प्रमुख हैं।

0: में किना
1: हाँ।
0: मैं अभिमन्यु के शादी करना
1: हाँ।
0: चाहता हूँ। राजा विराट अपन कन्याला सुपुर्त करे
1: हाँ भाई।
0: अरे कृपा सिंधु यदुनाथ तुम पांडव केरी प्रणाम। अरे

0: पत्रिका पढ़ करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन लिखे रहे से जय मधुसूदन कुंज बिहारी जय जय जय गोवर्धन धारी
1: है।
0: भगत है तो नर्तन तुम धरे हो नाना चरित्र यवनी बीच करे हो अभिमन्यु के ब्याह हम कीन्हा आए सादर यो दर्श मही दीन्हा।
1: हाँ
0: वो लिख करके पत्रिका भेजी।
1: हाँ भाई
0: अभिमन्यु लायो सुबह।

0: घर तुझ कर दैत्य बन में रहा मुलाकात होगी।
1: हाँ।
0: जननी सहित महतारी सुभद्रा के साथ
1: हाँ।
0: पहुंच जाते हैं पांडव के पास।
1: हाँ।
0: उकर कुल में जैसना शादी लिखेरी से निज कुल रीत ब्याह कराही, अपन कुल के रीत के मुताबिक शादी

0: धृष्टद्युम्न,
1: हाँ,
0: शिखंडी,
1: हाँ,
0: राजा विराट,
1: हाँ,
0: उत्तरा कुमार,
1: हाँ,
0: और शंख,
1: हाँ,
0: और उपरोहित जौन ऋषि से विराट के,
1: हाँ,
0: ये सब शादी के बाद में बैठे,
1: हाँ,
0: सब विचार कर इन पांडव मनी अपन कर्तव्य ला पूरा कर डरे हैं,
1: हाँ,
0: अब राजा दुर्योधन के कर्तव्य होते आधा राज पांडव कह दीना,
1: हाँ,
0: अब राजा दुर्योधन आधा राज देना चाहिए,
1: हाँ भाई,
0: कहने लगे कैसे किया जाए,
1: हाँ,
0: तो पांडव मना,
1: हाँ,
0: राजा द्रुपद के स्तुति करी,
1: हाँ,
0: और किंक महाराज में भेज दे के लाई,
1: हाँ,
0: अरे

और आइए अब चलते हैं बस्तर के मनमोहक लोक भावन वादियों में, जहां गूंजती है हल्बी, गोंडी, भतरी जैसे बोलियों में लोक स्वर लहरियां। बस्तर के भतरी भाग में प्रचलित लोक नाट्य यानी भतरा नाट्य उड़िया नाट एक गीतात्मक लोक नाट्य है। पौराणिक आख्यानों पर आधारित इस विधा में पात्र गा गा कर और नाच नाच कर संवाद प्रस्तुत करते हैं। आइए सुनते हैं ये भतरा नाट।

और इसी के साथ इस अंक का सफर यहीं तक। अगले अंक में किसी अन्य विधा के साथ पुनः उपस्थित होंगी। वाचन प्रीति यादव का, आलेख संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की, संयोजक पंकज मेश्राम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: छत्तीसगढ़ के लोक सुर का भाग 23 अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। कथायन में आइए अब सुनते हैं कहानी गुजरा हुआ कल। कहानीकार हैं चंद्रिका चौधरी।
1: वक्त की धारा हमेशा आगे नहीं बहती, कभी यह थक हार कर
2: अभी हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारण किया जा रहा था। मीडियावेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए परिक्रमा कार्यक्रम। वाचन और प्रस्तुति सहयोग है अंजनी कुमार पांडे का। प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार।

0: स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग और विविधा के विविध रंगों से सजी परिक्रमा की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी। आज के अंक में गंगा दशहरा पर्व पर हुए अनेक आयोजन, हुई गंगा आरती, श्रद्धा पूर्वक संपन्न हुआ बकरीद का पर्व, ईश्वर के प्रति समर्पण का है भाव, बारिश की फुहारों ने दी नवतपा में राहत, मौसम हुआ सुहाना, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर हुए जागरूकता कार्यक्रम, श्रोताओं, गंगा दशहरा हमारे अंचल का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन प्रकृति के संरक्षण के लिए अनेक तरह के सांस्कृतिक उपक्रम किए जाते हैं। बड़ी आस्था और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हुए जल स्रोतों के संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं। हिंदी के व्याख्याता श्री अजय चतुर्वेदी हमें बताते हैं।
1: गंगा दशहरा का पर्व पूरे भारतवर्ष में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी को बड़े हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाता है। जैसा इसका नाम ही है, स्पष्ट रूप से गंगा दशहरा दो शब्दों से बना है, तो यह जल प्रतिष्ठा या गंगा अवतरण का त्यौहार होता है। ऐसा मान्यता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थि को विसर्जित करने के लिए, सिराने के लिए माँ गंगा को स्वर्ग लोक से धरती लोक पर लेकर के आज ही के दिन, मतलब गंगा दशहरा के दिन लेकर आए हुए थे, इसलिए गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। इसका मैं बता दूँ कि मान्यता भी यह है कि दशहरा शब्द

0: मतलब दसों दिशाओं में हरियाली छा जाती है। आप देखे होंगे कि 10 दिन पहले, गंगा दशहरा से 10 दिन पहले हमारे सरगुजा अंचल में भी खूब पानी गिरा है, मतलब कि हरियाली छाएगा। और यह भी मान्यता है कि गंगा दशहरा से बरसात की शुरुआत होने लगता है। आप देख रहे होंगे कि अभी झमाझम बारिश भी चालू हो गया और बारिश हो रही है। तो ये दो मान्यताएं इसमें पड़ी हुई हैं जो देखने को मिल रहा है। एक और मान्यता इसमें क्या है कि बताया जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी का जो जल स्तर है वो 10 हाथ बढ़ जाता है। और हम बात करें अगर सरगुजा अंचल के विशेष परिप्रेक्ष्य में, तो सरगुजा अंचल में भी जिस तरह से गंगा नदी को एक पवित्र नदी माना गया है और जो भी साल भर के पूर्ण कार्य होते हैं वो नदी के तट पर जाकर विसर्जित किया जाता है, उसी तरह से सरगुजा में भी है। यहाँ के ग्रामीण क्या करते हैं कि गंगा नदी बहुत दूर है, वहाँ जा पाना संभव नहीं है, तो गंगा दशहरा के दिन गांव के किसी नदी नाले तालाब, खास करके ऐसे तालाब जिसमें पुरैन का पत्ता मतलब कमल का पत्ता से युक्त हो, उस जलाशय को, उस तालाब को वे गंगा तुल्य मानते हैं और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। और साल भर अपने जो गांव में, घरों में जो पुण्य कार्य होते हैं, जैसे शादी हुआ, विवाह हुआ, कक्कन मौरी उसका हुआ, या बच्चे का जन्म के समय का नाल हुआ, ऐसे सारे चीज़ों को, कलश हुआ, सारे चीज़ों को वो लोग उसी तालाब में जिसको गंगा मान रहे हैं ग्रामीण लोग ले जा करके सिरा देते हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि हमारा जो सरगुजा अंचल के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो ये भी इस पर्व को जल संरक्षण के रूप में या गंगा के संरक्षण के रूप में या गंगा के रूप में मनाते हैं। और दूसरी बात इसमें यह भी मिलता है जो एक मनोरंजन से जुड़ा हुआ है सरगुजा अंचल में, कि गंगा दशहरा के 5 दिन पहले या 3 दिन पहले गांव में कठपुतली का विवाह किया जाता है, जिसमें केवल बच्चियां, छोटे बच्चियां, बच्चे ही शामिल होते हैं। लेकिन इसके पीछे है कि बड़े बुजुर्ग घर के जो सियाने लोग हैं वो लोग उनका पूरा सहयोग करते हैं। उन्होंने ये बताया मुझे कि यह एक मनोरंजन का त्यौहार है, बच्चे छुट्टियां चल रही हैं, मनोरंजन भी करेंगे और उनको विवाह की जो परंपराएं हैं मतलब मंडप गाड़ने से लेकर के विदा होने तक के जो भी रीति रिवाज रस्मों का पालन किया जाता है उसको बच्चों को सिखाना है। ये धूमधाम से उसको 3 दिन शादी करते हैं और गंगा दशहरा के दिन उस कठपुतली को ले जाकर के उसी जलाशय में सिरा देते हैं। और बताओ इसके बाद जब गांव के लोग मेला जाते हैं, मेला लगता है 5 दिन 3 दिन तक, खूब मेला गीतों का गायन करते हैं, उधवा गीत गाते हैं जो सुनते ही बनता है, काफी अच्छा लगता है।
1: ए काका,
2: हाँ
1: देख तो जात है तुम कहाँ जात है गा?
2: अरे दशहरा तो जात है,
1: तो चल तो हमरो जाई
2: चली ना।
1: हाँ चल
2: चल चली।

0: अत्यंत श्रद्धापूर्वक समर्पण की भावना के साथ बकरीद का महापर्व संपन्न हुआ। इस दिन ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त की जाती है। क्या है बकरीद पर्व का आदर्श और इसे कैसे मनाया जाता है, आइए जानते हैं।
1: मेरा नाम मोहम्मद असीमुद्दीन रजवी, जामा मस्जिद अंबिकापुर से बोल रहा हूँ। बकरीद के बारे में मैं आपको चंद कुरान के हवाले से बता दूं
0: जी
1: कि कुर्बानी एक अजीम इबादत है। ये ऐसी इबादत है और ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की यादगार है। इब्राहिम अलैहि सलाम कौन है? ये हमारे पैगम्बर के दादा परदादा, जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा जाता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के नस्ल से तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम से इम्तहान लिया कि इब्राहिम तुम मेरी बारगाह में कुर्बानी करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। दूसरे दिन फिर ख्वाब में देखा कोई पुकारने

0: वाला पुकार रहा है, तो दूसरे दिन 2 समुद्र की कुर्बानी किया, तीसरे दिन 3 समुद्र की कुर्बानी किया। कुरान में आया है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम रब को महबूब बंदा नहीं बन सकते जब तक कि तुम महबूब चीजों को अल्लाह की राह में कुर्बानी न कर दो,
1: मतलब अपने तो सबसे प्यारी चीज,
0: सबसे प्यारी चीज।
1: जी जी,
0: तो सबसे प्यारी चीज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त जो सबसे प्यारी चीज थी वो औलाद थी, वो बेटा था।
1: बेशक बेशक जी।
0: तीसरी मर्तबा जो इम्तहान लिया गया कि आप महबूब चीज को, प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान कर दो, इसका जिक्र 23वें पारा में भी आया है, जब उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब 13 या 15 बरस के हो गए, इन्हें बलोग को पहुंच गए, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब देखा तो ख्वाब को पूरा करने के लिए हजरत इस्माइल अपने बेटे को मीना की वादी में ले जा करके आपने पूछा, राय लिया कि बेटा बता, कुरान में आया है फलम्मा बलगा माउस्ताया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, यानी ए मेरे बेटे मैंने तुझे ख्वाब में देखा है कि ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी रजा क्या है, क्या तेरी मर्जी है या नहीं है।
1: जी,
0: तो हज़रत इब्राहिम सलाम ने जब ये इशार फरमाया तो उनके बेटे ने कहा अबू जान जो आपको हुक्म है आप कर जाइए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। मुख्तसर यह है कि आपने अपने बेटे को अपने तरफ से कुर्बानी करने के लिए मुकम्मल इरादा बना लिया, हाथ पांव भी बांधा, यहाँ तक के चाकू चलाया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अदा इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला हजरत जिब्रील को भेजा, ये भेजा कहा कि जाओ जन्नत में चले जाओ, जन्नत में से एक दुम्बा ले जा करके इस्माइल की जगह किसी जानवर को लेटा दो, किसी दुम्बा को लेटा दो, आज मेरा खलील जोश में है, आज लगता है ये ख्वाब को पूरा करके ही जाएगा। जिब्रील गए जन्नत से दुम्बा लेकर के आए और इस्माइल की जगह पे लेटा दिए, और लेटाए तो जब ये चाकू चलाए तो गर्दन कटी, जब ये इन्होंने आंख में जो पट्टी बांधी थी जो खोला तो खोला तो देखा कि ये इस्माइल की बजाय यहाँ पे एक दुम्बा कटा हुआ है, एक जानवर जबह किया हुआ है। आवाज आई कि इब्राहिम तूने ख्वाब को सच्चा कर दिया, मैं तेरे बच्चों के बदले में, तेरे बेटे के बदले में मैंने जन्नत से जन्नती मेंढा भेज करके तेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर लिया। तो हम जो हैं एक पैगंबर की याद को मनाते हैं, क्योंकि अपना बेटा की कुर्बानी तो कोई कर नहीं सकता, तो वो हम एक पैगंबर की याद को मनाते हुए हम ये बकरीद यानी जिसे कुर्बानी का कहा जाता है हम कुर्बानी किया करते हैं, ये यादगार एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।
1: कारी साहब आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसा माना जाता है कि नवतपा 9 दिनों का ऐसा समय है जिसमें भीषण गर्मी पड़ती है, तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे सरगुजा जिला की तो बात ही निराली है, अक्सर हमने देखा है कि नवतपा के दिनों में यहाँ बारिश हो जाती है और मौसम अनुकूल हो जाता है। यदि तेज धूप निकलती भी है तो शाम और रातें ठंडी हो जाती हैं। इस बार भी यही हुआ, नवतपा शुरू होते ही बारिश ने उसके प्रभाव को कम कर दिया और लोगों ने राहत की सांस ली।
2: जी, मेरा नाम अरुण कुमार है। इस विषय पर यही कहना चाहूंगा कि जो नवतपा में जो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इस बारिश ने जो है उसको कम करके अचानक से बहुत बड़ी राहत दी है और मौसम बड़ा ही सुहाना हो गया है, जिससे कि कार्य करने की जो क्षमता है बढ़ गई है।
3: जैसे कि बाहर अगर आप जाए तो बारिश के बाद अगर धूप निकल रही है तो गर्म तो है, लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं तो बहुत राहत मिलती है।
2: हाँ जी, आपने ये बहुत सही कहा कि बाहर जाने पे तो गर्मी है, लेकिन अगर हम घरों में रहते हैं तो गर्मी महसूस नहीं हो रही है और काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक तो ये है कि इस समय जो लोग भी एसी चला रहे थे गर्मियों के मौसम में, उन्होंने अपना एसी बंद कर दिया है और वो पंखे पे ही काफी आनंद महसूस कर
3: राहत महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आप सरगुजा के ही रहने वाले हैं या आप कहीं बाहर से आए?
2: जी नहीं, मैं तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं काम के सिलसिले में आया हूँ।
3: तो कैसा मौसम में फर्क महसूस करते हैं?
2: वहाँ के गोरखपुर के मौसम में और सरगुजा के मौसम में बहुत ही अंतर है। यहाँ का मौसम जो है यहाँ के उपस्थित जंगलों के कारण और यहाँ की जो पर्वत पहाड़ियाँ उनके कारण बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही मतलब समशीतोष्ण प्रकार का मौसम यहाँ पर मैं अनुभव कर रहा हूँ।
3: मुझे लगता है कि सरगुजा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप गर्मी के दिनों में तीनों मौसम का आनंद ले सकते हैं।
2: हाँ जी, ऐसा कहा जा सकता है कि सरगुजा

0: ऐसी जगहों में से एक है
1: जी
0: जहां पर गर्मी के मौसम में भी जो है तीनों जगह के मौसम का आनंद लिया जा सकता है।
1: क्योंकि कल आपने बारिश देख ही ली और उसके बाद ठंड देख लिया और फिर आज की गर्मी भी देख ली।
0: हाँ जी, आपने बहुत सही कहा। कल बारिश के बाद रात के समय जो है, रात्रि के समय मौसम काफी ठंडा हो गया था, यहाँ तक कि कूलर चलाने पे भी ठंड लग रही
1: ठंड
0: थी,
1: लग रही
0: तो
1: थी।
0: पंखा पंखे को भी हम लोगों ने बंद कर दिया था क्योंकि पंखा चलाने पर भी 2 बजे के बाद ठंड लग रही थी। और जैसा कि अभी आज दोपहर के समय थोड़ी सी गर्मी कल
1: गर्मी
0: की
1: हो रही
0: अपेक्षा बढ़
1: है।
0: गई है।
1: आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, 31 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर नगर में अनेक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुए, जिसमें जन सामान्य को धूम्रपान से होने वाले खतरों के प्रति आगाह किया गया। साथ ही लोगों ने धूम्रपान छोड़ने और दूसरों को इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प भी लिया। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा, जिसमें वाचन स्वर था अंजनी कुमार पांडेय का। और अब लीजिए पेश है ज्ञान और मनोरंजन के विविध रंगों से सजी हमारी आज की विविधा।

विविधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, आप सभी जानते ही हैं कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और इस दिन तंबाकू सेवन के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति। श्रोताओं, हमारे शरीर पर तंबाकू का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, चाहे इसका सेवन किसी भी तरह से किया जाए। कुछ लोग इसे धूम्रपान के रूप में लेते हैं, पाउच में खाए जाने वाले पान मसाला की तरह खाते हैं, कुछ लोग इसे पान में सीधे खाते हैं। कई तरह से तंबाकू सेवन किया जा रहा है हमारे समाज में। शहरी वर्ग ही नहीं, ग्रामीण वर्ग में भी और पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी तंबाकू सेवन की आदतें हम देखते हैं। और बड़ी चिंता की बात है कि आज का जो युवा वर्ग है वो फैशन के तौर पर तंबाकू सेवन को अपना रहा है। आम तौर पर आपको युवा धूम्रपान करते हुए दिखाई दे जाते हैं। धूम्रपान के अपने नुकसान हैं, शरीर पर इसके बहुत तगड़े दुष्प्रभाव हैं। क्या है धूम्रपान, क्यों इसकी लत लग जाती है, कैसे इससे बचें और शरीर को कैसे इससे बचाएं, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हम नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्त से बातचीत कर रहे हैं। सुनिए इस बातचीत का संपादित अंश।

0: डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। सरगुजा क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है आपका तंबाकू निषेध को लेकर के, और कुछ समय पहले तक हम ये देखा करते थे कि जगह जगह पे रथ पर अनाउंसमेंट हो रहा है और खूब अच्छा काम रहा है आपका, तो जरा अपने अनुभवों के बारे में बताएं कि क्या स्थिति है सरगुजा जिले में धूम्रपान को लेकर के।
1: 2014 में जब मैंने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत में नोडल सिफ अर्थात प्रभारी का पद संभाला, उस समय मैं जैसा विचित है कि मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ, तो सामान्य रूप से तंबाकू खाने वाले जो मरीज हैं वो प्राय हमारे विभाग में आते थे। तो बड़ा एक दर्दनाक मंजर मेरे सामने में आया कि जब व्यक्ति तंबाकू के कारण से कैंसर रोग से पीड़ित हो जाता था, तो उस समय उसकी देखभाल जांच कराने के लिए बहुत सारे लोग, करीबन 8 से लेकर 10 लोग जो है जब वो भर्ती होता था तो आते थे देखने के लिए। इस प्रकार से ऑपरेशन के 2 से 3 दिन के बाद का मंजर ये रहता था कि एक मेला या हुजूम जैसा बना रहता था। उसके बाद फिर हम देखते थे कि धीरे धीरे मंजर खत्म हो जाता था, और अब जो है कहते हैं 10 दिन यदि मरीज का कैंसर के बाद सर्जरी में यदि हॉस्पिटल में रुका हुआ है तो वहां पर उनसे मिलने वाला कोई भी नहीं रहता था। बस यदि उसके साथ में यदि कोई साथ देता था तो उस समय केवल उसकी मिसेस या औरत रहा करती थी। तो ये जो

0: चीजें जो है लगातार हमने इस कारण के पीछे कारण को जानने के लिए भी बात की, तो ये चीज समझ में आया कि कहते ये बीमारी ऐसी बीमारी होती है जो कि उस व्यक्ति को केवल केवल मौत के या गंभीर बीमारी के डगर में ही नहीं ढकेलती है, बल्कि पारिवारिक रूप से जो है वो परिवार को भी खोखला कर देती है। और इसका बस केवल यही एक कारण रहता है कि केवल तम्बाकू जो नशा के कारण से का पदार्थ माना जाता है, और जिसमें एक बार लत लग गई और वो लत जो रहती छूटती नहीं है, आदमी चाह करके भी छोड़ना चाहता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो छोड़ नहीं पाता। दुष्परिणाम निश्चित है, दुष्परिणाम घातक है। आप यूं समझ सकते हैं कि तम्बाकू हमारे मानव शरीर के लिए एक ऐसा बीज है जो कि किसी के शरीर में अंकुरित होकर के कैंसर रूपी बीमारी पैदा कर सकता है, या किसी के शरीर में जो है खून की नली को पतला करना, या पक्षाघात का कारण बनना, या फिर हार्ट अटैक का कारण बनना होता है। तो ये निश्चित है कि निश्चित रूप से जो है तंबाकू का सेवन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और ऐसी बीमारी के साथ में मरीज को हम अकेला पाते हैं, और ऐसी स्थिति में मरीज चाहता है कि घर के सारे लोग रहें, लेकिन वो भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ता चले जाते हैं। तो एक बड़ी विडंबना हम आए दिन नहीं देखते थे, तो मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के पीछे हम लड़े। और जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस विभाग तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को मैं देखूं, तो उस समय फिर कहते हैं मुझे इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अवसर मिला, और इस के बारे में उत्सुकता भी रही कि लोग इतना खतरनाक चीज है जिसका स्वास्थ्य के बारे में हानिकारक सबको लगभग प्राय पता रहता है, फिर भी सेवन करते हैं तो क्यों सेवन करते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा शोध का विषय रहा। तो दो तीन चीज मैंने पाया। पहला चीज ये कि लोग जो है तम्बाकू के सेवन को बड़ा इजी तरीके समझते हैं, कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को ये कैंसर बीमारी हो
1: जी,
0: परंतु मैं बताना चाहूंगा कि ये मति भ्रम है। ये भ्रम की स्थिति है जो भी तम्बाकू का सेवन करते हैं, तम्बाकू एक प्रकार का केमिकल होता है और वो निश्चित रूप से आपके शरीर के सिस्टम को प्रभावित करता है, और वो प्रभावित जो करता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शरीर को प्रभावित करने की जो दिशा होती है वो शरीर का डिस्ट्रक्शन या विनाशकारी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तंबाकू को लेकर के ढेर सारी भ्रांतियां हैं। अगर हम माने स्टूडेंट्स की बात करें, छात्रों की बात करें, उन्हें लगता है कि तंबाकू मुंह में दबा लेंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है, पढ़ने में मन लगने लगता है। दूसरी भ्रांति ये है कि तंबाकू खा लेंगे तो पेट साफ हो जाएगा। तीसरी भ्रांति यह है कि तंबाकू खाने से मन को बड़ा चैन और सुकून मिलता है और इससे कुछ होता नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है सर, जरा बताएं।
0: हाँ, जैसा पहला आपने बताया कि तंबाकू को दबा लेने से या तंबाकू सेवन किसी भी रूप में, चाहे खाने के रूप में हो चाहे धूम्रपान के रूप में, ऐसा प्रतीत होता है कि वो कहते हैं माइंड को स्थिर करता है, परंतु हमको ये भी देखना है कि जो हमारा माइंड स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है वो दूरगामी रूप से हमारे शरीर को खोखला कर रहा है, मतलब उसकी हमें कीमत चुका रहे हैं
1: जी।
0: पहली बात, क्योंकि ये नशा है तो ब्रेन में जो असर करता है, ब्रेन को थोड़ा सा काम करता है, परंतु यदि इसका ये मतलब नहीं है कि इस ब्रेन को काम करने के लिए या ब्रेन को स्थिर करने के लिए हमारे पास में दूसरे साधन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कंसंट्रेशन की यदि किसी को परेशानी है तो मेडिटेशन जो है उसका एक सही आंसर है, ना कि नशा करके अपने शरीर को खोखला बनाते हुए शरीर को बर्बाद करने की डगर में निकल पड़ना। तो ये एकदम से क्लियर है कि ये जो कंसंट्रेशन तो नहीं बनाता है परंतु हाँ शरीर को खोखला करता है, ये निश्चित है। दूसरी बात है कि लोग ये सोचते हैं कि ये कहते हैं पेट को साफ होने में मदद करता है
1: जी।
0: मैं इतिहास में यदि जाना चाहूंगा तो पहले कभी ये भ्रांति रहा करती थी कि जो तंबाकू है, तंबाकू का पत्ता जो है वो एक तरीके से मैजिक लीव या गोल्डन लीव के रूप से ये फेमस था
1: जी।
0: तो उस समय जब जानकारी का अभाव था उस समय ये चीज सोचते थे कि तंबाकू की थोड़ी सी मात्रा आप ले लो, चाहे शरीर का दर्द हो, चाहे पेट साफ नहीं हो रहा है, चाहे हेडेक सिर में दर्द हो रहा है, उन सब का निदान जो रहता है वो तंबाकू का पत्ता कर देता है। परंतु जब ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात, ये 1940 के आसपास जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात जब चल रही थी, तो उस समय ये चीज क्लियर हो गई, उस समय साइंस भी डेवलप हो गया कि ये सारी जितने भी चीजें हैं वो होती

0: करती हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान जो रहता है हमारे शरीर में करके जाती हैं, जिसकी भरपाई हो पाना वो जो रहता है मुश्किल होता है। जी पूरी तरह से मिथ्या है और भ्रांति है और मन को बहलाने वाली बात है।
1: आज के युवा वर्ग जो है वो दोनों दो उंगलियों में सिगरेट को दबा लेना फैशन की तरह ले रहे हैं और बहुत ही आकर्षित हो रहे हैं धूम्रपान की तरफ।
0: ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है। सामान्य रूप से जो एक उम्र होती है जो कि उम्र का 7-8 साल से 22 साल की उम्र रहती है
1: जी,
0: ये इस उम्र को हम लोग टॉडलर उम्र बोलते हैं या फिर बचपना या बचपना का समय बोलते हैं
1: जी।
0: इसमें जो रहता है मानव के जो मन स्थिति रहती है वो आसपास की चीजों को देखता है और देख करके थोड़ा सा जो असामान्य लगता है या थोड़ा सा लोगों से हट के काम दिखता है या जिसका प्रचार प्रसार ऐसा लगता है कि यदि किसी कोई हीरो यदि इस प्रकार की एक्टिविटीज कर रहा है तो वो बड़ा उनको मैजिकली या मैग्नेटिकली मतलब आकर्षित करता है। तो ये जो युवा वर्ग जो है वो उसमें चीजों को सोचने समझने और गुण और दोष के आधार पर चीजों को लेने की जो क्षमता होती है उसपे थोड़ी सी अपरिपक्वता रहती है
1: जी जी।
0: तंबाकू कंपनियों का भी विशेष रूप से ये ग्रुप जो रहता है विशेष रूप से कहते हैं ये केंद्र का रहता है और इस साल जो विश्व वैश्विक नो टोबेको डे जो बनाया जा रहा है उसका भी इस वर्ष का हमारा ये थीम है कि हम जो टोबेको कंपनियां हैं जो कि पर्टिकुलर 8 साल से लेकर के 22 साल की उम्र को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न हीरो के द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार करते हैं विज्ञापन करते हैं या स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू के उत्पाद को बेचने के लिए प्रमोट करते हैं इनको हम लोग कहीं ना कहीं हतोत्साहित करें जिसमें जो है सोचने समझने की चीजें नहीं रहती है और हमेशा एक ख्याल आता है जो भी होगा देखा जाएगा। तो जो भी होगा देखा जाएगा जब ये ख्याल आता जाता है तो फिर वैसी स्थिति में जो रहती है कई चीजें नशा के रूप में हमेशा के लिए हो जाती है। एक जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि जितने भी लोग तंबाकू खाते हैं उसमें ये देखा गया है कि जो 80% ऐसी कम्युनिटी जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनमें आदत जो पड़ती है वो यही 8 साल से लेकर 22 साल के बीच की ही समय रहता है। इसके बाद आदत पड़ने का चांस ना के बराबर रहता है। शुरू में तो आदमी शौकवश खाता है फिर बाद में आदत से मजबूर हो जाता है और यदि उसको ये तंबाकू नामक पदार्थ नहीं मिला तो एक अजीबोगरीब पैचेनी सी नजर आने लगती है।
1: डॉक्टर साहब कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको आप टोबैको प्रोडक्ट मानते हैं तंबाकू उत्पाद मानते हैं और जिसका सेवन नहीं करना चाहिए?
0: तंबाकू उत्पाद को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ऐसा तंबाकू उत्पाद जिसको खाने के रूप में उपयोग किया जाता है
1: जी,
0: जिसमें से आपका गुटखा है जर्दा है पान मसाला में तंबाकू मिलाकर खाना होता है गुलकंद रहता है ये जो है तंबाकू खाने के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा तंबाकू का उत्पाद जो रहता है जिसको पीने के रूप में उपयोग करते हैं जिसमें से हुक्का बार है सिगरेट है और बीड़ी है। तो मुख्य रूप से तंबाकू का जो सेवन है ये दोनों ही रूप में किया जाता है खाने वाले अथवा पीने वाले के रूप में किया जाता है।
1: डॉक्टर साहब अगर कोई छोड़ना चाहता है तंबाकू सेवन छोड़ना चाहता है इसके चंगुल से मुक्त होना चाहता है और प्रयास करने के बाद भी वह अवसाद में है और छोड़ नहीं पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए?
0: यदि कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ना चाहता है और वो छोड़ नहीं पा रहा तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है उस चीज की काउंसलिंग की। उसको ये समझने और समझाने वाली बात होती है कि ये जो तंबाकू जो है को छोड़ने के बाद में जो कुछ दिनों का अवसाद या कुछ दिनों की बेचैनी रहती है वो कुछ दिनों की रहती है अमूमन 7 दिन से लेकर के 14 दिन तक की बेचैनी रहती है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए हमको हर कदम उठाना चाहिए। तो हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं उसमें से सबसे पहला कदम ये है कि जो चीजें तंबाकू को अट्रैक्ट करती हैं अर्थात जैसे यदि हमारे रास्ते में यदि कोई पान ठेला गुजरता है वो एक तरीके से अट्रैक्शन होता है। ऐसे दोस्त जो तंबाकू के बिना नहीं रह पाते हैं तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनसे हमको थोड़ा सा दूरी बनानी रहती है। ऐसा समय पूरे दिन भर में 5 समय ऐसा रहता है जहां पर तंबाकू खाने की आदत होती है ये साइंटिफिक रूप से देखा गया है
1: जी जी।
0: जैसे उठने के बाद में दूसरा फ्रेश होने के बाद में तीसरा खाना खाने के बाद में चौथा जो रहता है शाम को, अब पांचवा खाना खाने के बाद में रात को।

0: रात को ये जो 5 जो समय रहता है, इस समय को हमको कोई प्रोडक्टिव वर्क में लगाना चाहिए। जैसे अपन वॉकिंग कर सकते हैं, जैसे वैसे उस स्थिति में हम लोग अच्छे गाने सुन सकते हैं, जैसे उस स्थिति में हम ये आदत डाल लें कि अपने परिजनों से, अपने मित्रों से बात करेंगे। तो ये जो 5 समय है उसमें अपने आप को हमको इन्वॉल्व करना रहता है। ये 5 समय ऐसे रहते हैं जो कि किसी भी लत के जो शिकार रूप रहते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरी बात है कि जब भी कोई चीज को हम लोग छोड़ते हैं तो हमें कोई ना कोई एक अच्छी आदत हमारे अंदर में लेना चाहिए
1: जी।
0: और तम्बाकू की लत यदि आप छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छी हैबिट है, कुछ अच्छी हैबिट जो कि आपको हेल्दी लाइफ बनाने में जो रहती है वो सहायक चीज होती है, जिसमें से मॉर्निंग वॉक करना, जिसमें से आपका जिम करना, जिसमें से आपका कुछ एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये सारी अच्छी लाइफ हेल्दी लाइफ स्टाइल में आती है। इसको कहीं ना कहीं आपको अपनाना होगा।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमारी जिज्ञासाओं को बढ़ाते हैं, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है। उम्मीद करते हैं कि इस 15 मिनट में हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पर्श किया और जानकारी बनाने की कोशिश की। आपने हमसे बातचीत की, अपना महत्वपूर्ण समय आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र गुप्त से बातचीत कर रहे थे अंजनी कुमार पांडे। आपको हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर लिख भेजिए। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग और वाचन स्वर अंजनी कुमार पांडे का और प्रस्तुति थी प्रमेंद्र कुमार की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे परिक्रमा कार्यक्रम, वाचन एवं प्रस्तुति संयुक्त अंजनी कुमार पांडे का था, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मिडवे पर और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, माफ कीजिएगा, सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गुंजन कार्यक्रम।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। सुबह की शुरुआत जैसे ही होती है हमारा रेडियो चालू हो जाता है। हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ आवाज़ों का रिश्ता नहीं है, यह एक ऐसा अपनापन है जो जुड़ा हुआ है रेडियो के माध्यम से। वही रेडियो जिसे हम अपना सबसे सच्चा साथी मानते हैं, कभी मधुर गीतों के जरिए, कभी समाचारों के जरिए, तो कभी स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज से जुड़ी नई नई जानकारियों के जरिए।

रेडियो हर पल हमारे साथ रहता है और हमारे किसान भाई जो खेतों में पूरी मेहनत और लगन के साथ जुटे रहते हैं, वे भी रेडियो के माध्यम से खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं, समझते हैं। साथियों, रेडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह जीवन का साथी है, यादों का हिस्सा है और दिलों को जोड़ने वाला खूबसूरत एहसास है। जरा पुराने दौर को याद कीजिए, जब बड़े बड़े जालीदार और नक्काशीदार रेडियो घर की शान हुआ करते थे।

पूरा परिवार एक साथ बैठकर कार्यक्रम सुना करता था और जैसे ही रेडियो बजता घर का माहौल ही बदल जाता था। और आज देखिए वही रेडियो हमारी जेबों तक पहुंच चुका है। जी हाँ, जब अब हमारे मोबाइल फोन में भी रेडियो है और हम दुनिया के किसी भी कोने में हो रेडियो से जुड़े रह सकते हैं। यही तो है हमारी और आपकी दोस्ती का सबसे प्यारा रिश्ता। और साथियों, गर्व की बात यह कि ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी अपने शानदार सफर के 90 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रही है। 9 दशकों का यह सफर नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों, यादों और भावनाओं का ये मधुर सफर है। वैसे साथियों, मुझे तो कुछ कुछ होता है रेडियो सुनकर, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है जब मैं रेडियो के कार्यक्रमों को सुनता हूँ, और शायद आपके दिलों में भी कुछ कुछ होने लगता है। जब आप रेडियो के कार्यक्रमों को

वैसे साथियों, मुझे तो कुछ कुछ होता है रेडियो सुनकर, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है जब मैं रेडियो के कार्यक्रमों को सुनता हूँ, और शायद आपके दिलों में भी कुछ कुछ होने लगता है। जब आप रेडियो के कार्यक्रमों को पूरे मन के साथ सुनते हैं,

0: रेडियो के माध्यम से। और रेडियो पर समय समय पर हम बहुत सारे कार्यक्रमों को प्रसारित करते हैं आप सब के लिए।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

रेडियो के विकास की में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हेनरिक हर्ट्ज का माना जाता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सिग्नल तार के भी रेडियो तरंगों के माध्यम से प्रसारित किए जा सकते हैं। आप सबने सुना होगा मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। तो इसमें जो किलो हर्ट्ज शब्द है ना, वो हेनरिक हर्ट्ज के नाम से ही जुड़ा हुआ है। भारत में पहला रेडियो प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा किया गया था। फिर 8 जून 1936 को इसका नाम आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रखा गया, जिसे आज हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। रेडियो का सफर विज्ञान की एक अद्भुत खोज से शुरू हुआ था। और भी यह ज्ञान का सूचना मनोरंजन का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। सदियों आकाशवाणी की कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे हमारे अंतर मन को छू जाती हैं। उन दोनों में सबसे सुंदर आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून

जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। इसकी दुनिया बहुत निराली है। कभी जानकारियाँ, कभी फ़ायदे की बातें, कभी ऐसी अनगिनत बातें जो हम हर रोज़ सुनते हैं।

जैसे ही ये धुन सुनाई देती है, एक अपनापन सा महसूस होने लगता है, जैसे ये हमारे परिवार की धुन है जिसमें आप हैं और हम हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि वाल्टर कोपमैन स्वरबद्ध किया था इस धुन को, और फिर जब इसी क्रम में मंगल ध्वनि गूंजती है तो लगता है अब कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। रेडियो का जिक्र तो अब गानों में भी होने लगा है, जैसे कि ये वाला गीत जिसमें रेडियो की कुछ बातें कही गई हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, मन का रेडियो बजने दे जरा। जब ये गीत बजता है ना तो लगता है कि हाँ, रेडियो पर प्रसारित कोई गीत जो हमें रेडियो की बातें बता रहा है। और ये वाला रेडियो तो गीत तो सबसे खास लगता है मुझे।
1: ऑल इंडिया रेडियो बाबा।
0: यही बातें रेडियो की मुझे बहुत पसंद आती हैं, जब हम गीतों में रेडियो का नाम सुनते हैं तो। रेडियो हमारा सच्चा साथी है,

रेडियो हमारा सच्चा दोस्त है। जब हम उदास होते हैं तो गीतों से हमारा मनोरंजन होता है और नई नई जानकारियां समय समय पर हमें रेडियो के माध्यम से मिलती हैं। रेडियो ने हम सबको जोगी बनाकर रखा है, एक प्यारा दोस्त बनाकर रखा है और उन दोस्तों में सबसे प्यारे श्रोता दोस्त हमारे आप हैं।

जी हाँ दोस्तों, रेडियो हमारा सच्चा दोस्त है, हमारा सच्चा साथी है। जब कोई धुन हम आकाशवाणी की सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो धुन हमारे लिए ही बनी है। सच तो ये कि आकाशवाणी की धुनें केवल संगीत नहीं है बल्कि पीढ़ियों की यादों, भावनाओं और विश्वास की आवाज़ है, तो आज भी उतनी ही आत्मीय लगती है जितनी वर्षों पहले लगती थी। आज यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 1 किलोहर्ट्ज़ का टोन का मैं जिक्र करने वाला हूँ, जिसे हम आकाशवाणी की प्रातःकालीन सभा के आरंभ में सुनते हैं, वो टोन ये है। इसे 1 किलोहर्ट्ज़ की टोन कहा जाता है।

और इसके ठीक बाद सिग्नेचर ट्यून का आरंभ होता है। जैसे लगता है कि नए प्रसारण दिवस की शुरुआत हो चुकी है जब हम ये सिग्नेचर ट्यून आकाशवाणी की सुनते हैं। साथियों, आकाशवाणी के माध्यम से संगीत की जो बहार घर घर पहुंची है उसकी बात ही कुछ और है। संगीत ने सदियों से लोगों को जोड़ा है, दिलों को करीब लाया है और भावनाओं को स्वर दिए हैं। शायद यही कारण कि भाषा क्षेत्र और उम्र की सीमाओं से परे संगीत हर किसी के मन को छू लेता है। आकाशवाणी ने केवल कार्यक्रम नहीं सुनाए बल्कि संगीत संस्कृति और संवेदनाओं की ऐसी विरासत संजोई है जो आज भी लाखों श्रोताओं के दिलों में धड़कती है। और समय समय पर हम आकाशवाणी के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस गर्मी भरे मौसम में आप सबको अपना ख्याल रखना है, पानी खूब सारा पीना है। इसके अलावा यदि आपको छाछ मिल जाए या नींबू पानी मिल जाए या नारियल पानी मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। इसे आप लेते हैं तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं और गर्मी के दिनों में आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उससे आपकी ताजगी बनी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसी ही जानकारियाँ आप रेडियो पर सुनते हैं।

और रेडियो से हमारा प्यार बहुत पुराना है। जब से रेडियो का आविष्कार हुआ है और जब से हम रेडियो सुन रहे हैं, तब से ये प्यार बढ़ता चला गया है। और मुझे लगता है जैसे कि मैं रेडियो को बहुत प्यार करता हूँ, आप भी उतना ही रेडियो को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।

0: इसका जादू हम सब पे चढ़ा हुआ है। जब जब हम रेडियो सुनते हैं इसका जादू चल जाता है और हम आकाशवाणी के कार्यक्रमों से समय समय पर लाभ उठाते रहते हैं। इसी के साथ आज गुंजन कार्यक्रम में बस इतना ही। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए सड़क हादसे में भिलाई के 4 लोगों समेत 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए आज मतदान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाता अपने पदाधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर करीब 1,02,800 मतदाता वोट डालेंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हो रहा है। पंचायत चुनाव की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के इस अभियान का आयोजन 30 जून तक किया जाएगा। अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला स्तर पर कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान किसानों को अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भिलाई के चंद्राकर परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा साच पास मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई मूल के एक दंपति और उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह परिवार बेंगलुरु में रह रहा था। जानकारी के अनुसार 2 परिवार डलहौजी से साच पास घूमने गए थे। वाहन के वापस नहीं लौटने पर GPS के माध्यम से उसका पता लगाया गया। पुलिस और प्रशासन ने राहत अभियान चलाकर सभी शवों को बाहर निकाला। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सामाजिक समरसता, सादगी और सकारात्मक मूल्यों को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इस अवसर पर बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू भी सामूहिक विवाह समारोह में वैवाहिक बंधन में बंधे। उनकी बारात पारंपरिक बैलगाड़ी में निकाली गई, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रही। इस बैलगाड़ी के सारथी उप मुख्यमंत्री अरुण साव बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहते हुए सादगीपूर्ण विवाह करना और बैलगाड़ी में बारात निकालना समाज के लिए प्रेरणादायी संदेश है। उन्होंने

कहा कि यह हमारी लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है तथा नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की सीख देता है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके चलते तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव में अमराई यानी आम के बगीचे लगाने की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आम का विशेष महत्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के चांबा जिले में हुए सड़क हादसे में भिलाई के 4 लोगों समेत 8 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: अभी प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मीडियावेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। प्रस्तुति सहयोग है पोलोमी का, प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार।
1: हेलो

0: आपकी बात आपकी गीत। इस कार्यक्रम में फोन पर हम आपसे करते हैं बातें और सुनते हैं आपकी फरमाइशें। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं पॉलमी। गर्मियां जितनी अधिक बढ़ रही हैं, उतनी ही तीव्रता से आंधी तूफान भी आ रहे हैं। नौतपे का आगमन हो गया है, जेठ का महीना अब खत्म होने वाला है। ऐसी गर्मी में आम के चटकारे लेते हुए आप रेडियो पर हमें सुन रहे होंगे और इसी कड़ी में अब आप सुनेंगे अपनी फरमाइश के गीत। और देखिए, कॉल आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो देर न करते हुए उठाते हैं पहला कॉल और सुनते हैं आपके दिलों की बातें। हेलो, आपकी बात आपकी
1: जी। बहन जी, मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ। बहन जी,
0: सुरित रमेश साहू, आपने काफी अरसे बाद हमें कॉल लगाया है क्या?
1: जी बहन जी।
0: और क्या हालात चल रहे हैं दुर्ग में
1: इन दिनों? दुर्ग में है क्या बहन जी कि गर्मी बहुत पड़ रही है
0: जी,
1: और गर्मी इतनी गर्मी है बहन जी कि 42 डिग्री सेल्सियस है दीदी पारा जो है।
0: 42 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी में तो बहुत ही खतरनाक होता है दोपहर में बाहर जाना।
1: अरे बहुत ही खतरनाक है बहन जी। कई पक्षी तो क्या है, मैं खेतों में बैठा हूँ बहन जी, इस समय मक्का के खेती किसानी करता हूँ बहन जी, और मक्का के खेती किया हूँ बहन जी, और धान के तो दोनों की कटाई चल रही। तो मैं यहाँ पर नीम के छांव में बैठा हूँ बहन जी।
0: अच्छा,
1: तो मैं देख रहा हूँ कि एक आध दो पक्षी जो है चक्कर खा के फड़फड़ा के जमीन पे गिर जाते हैं बहन जी, छोटी छोटी पक्षी जो होती है वो। तो क्या कर रहा हूँ बहन जी, उसको अपने हाथों से हला के पानी वानी पिलाता हूँ बहन जी, उसको छांव में बैठाता हूँ, थोड़ी देर बाद वो उड़ जाती है बहन जी।
0: बहुत नेकी का काम कर रहे हैं आप सुरित जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। दूसरी बात यह है बहन जी के तो बेजुबान जीव जंतु है बहन जी, इसके लिए तो कम से कम हमको छतों के टावर पे या

0: मक्खी के किनारे जो छज्जा लगी रहती है बहन जी, उसमें भी एक आध टब में पानी रखना चाहिए ताकि उड़ने वाली चिड़िया जो है वो वहाँ पर बैठ करके पानी पी सके और अपनी शीतलता प्रदान कर सके बहन जी। और साथ ही साथ जो है अपने दरवाजे के बाहर जो है सड़कों पे एक आध टब वहाँ भी पानी रख देना चाहिए ताकि पशु भी जानवर भी आकर के पानी पी सके बहन जी।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पशुओं पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना हमारा धर्म है, तो उनके लिए जल और छांव की व्यवस्था करना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है।
0: जी बहन जी, आप कौन बोल रहे हैं बहन जी? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर मीठी मनमोहक और प्यारी आवाज और कार्यक्रम पेशकश के क्या कहें बहन जी।
1: जी मेरा नाम है पौलमी और बहुत बहुत धन्यवाद प्रशंसा के लिए।
0: तो दीदी आपके लिए एक छोटी सी शेरो शायरी अगर इजाजत हो तो बोलूं दीदी।
1: बिल्कुल इरशाद
0: जी। खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते, इन आँखों में रंगीन नजारे नहीं होते, हम भी न करते परवाह अगर आकाशवाणी अंबिकापुर से आपकी बात आपके गीत बहन जी के द्वारा पेशकश किया गया है कार्यक्रम। इतने प्यारे न होते बहन जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए चुने हुए इन शब्दों के लिए, और इसी तरह आप बहुत अच्छे अच्छे गीतों के शौकीन होंगे लगता है आपकी बातें सुनकर
0: तो। जी बहन जी, मैं तो पुराने ख्यालात के इंसान हूँ बहन जी, और पुराना गीत ज्यादा सुनता हूँ बहन जी, पुराने फिल्म भी देखना बहुत पसंद करता हूँ। साथ ही साथ बहन जी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे कुछ प्रशंसक श्रोता हैं जो आपके प्रोग्राम को खास पसंद करते हैं, चाहे वो प्रोग्राम मनभावन हो चाहे आपकी पसंद वगैरह हो। दीदी जो आपके यहाँ से ईमेल की गुंज वगैरह जो होती है ना,
1: जी जी,
0: उनको खास करके पसंद करते हैं बहन जी, और कभी टेलीफोन पर कॉल हो जाती, बात हो जाती तो आपके नाम का जिक्र होता है बहन जी।
1: जी जी जी,
0: तो ऐसे कुछ प्रशंसक श्रोता का नाम ले लूंगा इजाजत हो तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल बहन जी। तो हमारे साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परसूली से जितेंद्र दास मानिकपुरी है, कन्या दमो बालाघाट से श्रीमान ढोरवाराम साहू जी गुरु जी है, हमारे डोंगरिया मलाजखंड से मुन्ना लाल पटले जी है, और शेख अल्लाह बख्श साहब जी है, और हमारे पीएस उन्हानकर जी हैं, और हमारे अरविंद कुमार जी है बहन जी, और सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर साहब जी है, जयपाल यादव जी है, ब्रिजेंद्र भाई विश्वकर्मा जी है बहन जी।
1: तो ये अब सभी श्रोता साथी एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और उस पर परिचर्चा करते हैं।
0: जी बहन जी, और हम लोग ईमेल में फरमाइश वगैरह भी भेजते हैं आपकी पसंद मनभावना बहन
1: जी। जी,
0: और मोबाइल ऐप से भी प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया साफ सुनाई दे रहा है बहन जी यहाँ पे। और दीदी क्या है कि आपके यहाँ का जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं, खास करके हमारे छत्तीसगढ़ी फोन इन जो कार्यक्रम आता है बहन जी, वो भी कार्यक्रम में हम फोन लगा करते हैं आपके यहाँ से।
1: जी जी जी, और सुरज जी कौन सा गीत सुनाएं आपको इस बार?
0: जीने की राह पिक्चर का गाना है दीदी, आने से जिसके आए बाहर।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम।
1: आपकी बात आपकी गीत मैडम जी, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से।
0: कैसे हैं सुरेंद्र कुमार जी?
1: काम कर रहे हैं मैडम जी, अभी ईटा चुनाई कर रहे हैं। 6 बजे से 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं, तो अभी छुट्टी होने को इसलिए फोन लगा के समय मिल गया मेरे को।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों आपके ग्राम राजापुर में?
1: राजापुर बहुत बढ़िया मैडम है, और बहुत धूप पानी कल आ गया था, धूप उमस अभी बढ़ गया है, तो छुट्टी हो गया हम लोग का काम तो अभी।
0: जी जी, कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से सुरेंद्र कुमार जी?
1: जी कुछ नहीं कहना चाहते हैं मैडम जी, मेरे दोस्तों के नाम बताना चाहते हूँ। सुरेंद्र कुमार राजवाड़े है, मानिक राम प्रजापति और खेल साय सिंह है, और नूर साय राजवाड़े है, और स्नोहर साय राजवाड़े है। जी मैम, हम लोग यहाँ कर रहे थे, साथी भी यहाँ पे अम्बेलाल राजवाड़े है और उमेश भुवनेश्वर सिंह है। जी मैडम, ये हमारे दोस्त हैं जो हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पास।
0: अच्छा, तो आप सभी मित्र मिलकर कार्य कर रहे हैं और हमारे केंद्र के कार्यक्रमों को आप सुनते
1: काम
0: रहते हैं।
1: सुनते हैं जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गीत सुनाएं आपको?
1: बिच्छू का गाना सुना दीजिएगा मैडम, अक्षय लड़ी है बीच बाजार में पहली बार।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, अपने बारे में बताइए।
1: जी, मेरा नाम तुलेश।

0: कुमार पैकरा, भटगांव से बात कर रहा हूँ मैं।
1: फुलेश्वर कुमार पैकरा, आप हमारे नियमित श्रोता हैं।
0: जी मैम, सुनता रहता हूँ और हम बीच बीच में फोन कॉल्स भी करता हूँ, क्योंकि और भी जो श्रोता हैं हमारे, उनको भी मौका मिल सके, इसलिए मैं बहुत अंतराल के बाद कॉल करता हूँ।
1: हाँ, मुझे लगा ही, क्योंकि आपसे तो मेरी तो पहली बार बात हो रही है।
0: जी, आप पॉलमी मैम बात कर रही हैं ना?
1: हाँ जी,
0: जी, पहली बार बात हो रही है हमारी आपकी।
1: जी, मेरी भी। तो क्या करते हैं आप फुलेश्वर जी?
0: मैम, मैं तो स्टडी करता था, तो अभी फिलहाल कुछ समय पहले स्टडी छूट गया है और मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, और मेरी रुचि, अगर आप कहें तो, क्रिकेट में ज़्यादा है।
1: अच्छा, तो आप क्रिकेट खेलते हैं?
0: हाँ, मैं जब हॉस्टल में था तो खेलता था क्रिकेट, और सोशल मीडिया से भी जुड़ा रहता हूँ कहीं ना कहीं।
1: तो आपने बताया आप दिव्यांग हैं और इसके बावजूद आप क्रिकेट खेल पाते हैं।
0: जी जी
1: हमारे श्रोताओं को जरा इसके बारे में खुल के बताइए।
0: मैं माना जाता हूँ, जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है,
1: हाँ जी,
0: उसमें कुछ मेटल्स डले हुए होते हैं, तो वो जैसे, और हमारे ऐसा है कि हम लोग का जो क्रिकेट होता है वो अंडर आर्म बॉलिंग होती है, क्योंकि जो नॉर्मल क्रिकेट होता है वो तो ऊपर से बॉलिंग करते हैं, तो हमारे में अंडर आर्म बॉलिंग होती है, और जो बैट होता है वो सेम होता है, जैसे नॉर्मल का बैट होता है वो सेम होता है, बॉल बस प्लास्टिक का होता है और उसमें बैट डला होता है, तो वो आवाज करते हुए जो बैट्समैन होगा वो बॉल का आवाज सुन करके और उसके ही तरफ बैट घुमाएगा वो, तो बॉल टच होगा बैट में, तो जिधर बॉल जाएगा उधर फील्डर दौड़ करके बॉल को पकड़ेगा या फिर रोक सकता है।
1: अच्छा,
0: तो ऐसा होता है मैम। हमारे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी, महिला क्रिकेट टीम, तो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, आपने देखा होगा न्यूज में अगर पढ़ा होगा तो।
1: अरे वाह,
0: तो उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है।
1: क्या बात है। तो आप भी पैरालंपिक्स और ये सब में पार्टिसिपेट करेंगे?
0: मैम, अभी तक तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन हाँ, अगर चांस मिलता है, यार अवसर मिलता है, तो अवश्य करने की कोशिश करूँगा।
1: तो आपकी खेलों में रुचि है, तो मेरा तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप उसी दिशा में आगे बढ़ें और हमारे लिए आप आगे बढ़ें, यही मेरी प्रार्थना रहेगी।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: जी, तो फुलेश्वर जी, चूंकि आप इतने मज़ेदार व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कौन से गीत को सुनाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को इस बार?
0: एक मूवी आई थी 2017 में, धोनी, तो इसका कोई भी गाना एक सुनवा दीजिएगा।

0: हेलो, आपकी
1: हेलो
0: बात, आपकी
1: है?
0: गीत।
1: हाँ जी
0: नमस्कार, अपने बारे में
1: जी
0: बताइए।
1: जी नमस्कार पलोमी जी।
0: नमस्कार,
1: हेलो
0: आपने मुझे पहचान लिया। हेलो,
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं, हम आपके केंद्र के एकदम नियमित श्रोता, जुड़े हुए श्रोता हैं। और मैं अपना परिचय बता देना चाहूँगा कि मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: मधुसूदन जी, काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी, बहुत लंबे अच्छों से के बाद बात हो रही है, और पिछले दिन चिट्ठी पत्री में सुना, बहुत ही अच्छा लगा।
0: आपके पत्र को हमने शामिल किया था।
1: जी, मैं बहुत ध्यान से, और मैं तो चिट्ठी पत्री का हर प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, जब भी मन करता है सुन लेता हूँ। आकाशवाणी में जो छोटी मोटी कार्यक्रम हुआ करता रहता, उसमें भी अपना सहभागिता निभाते रहता हूँ। आज क्योंकि मद्यपान निषेध दिवस है, तो इस तरफ में दो शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि जो जो नशीली पदार्थ होता है उससे हमें दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान होता है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम नशीली पदार्थ से हमेशा दूर रहें, और लोगों से नशीली पदार्थ का सेवन करने से रोकें।
0: जी
1: आपकी आकाशवाणी के द्वारा भी इस टाइप से मतलब दिन विशेष पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो बनाते हैं या तो बजाए जाते हैं, विशेषकर जो बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में, मतलब हर दिन विशेष पर एक विशेष जानकारी मिलते रहती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम श्रोताओं के लिए।
0: जी, उस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि आप तक जिस दिन जो भी विषय हमें प्राप्त होता है, हम उस विषय को आप तक पहुंचाते हैं और नई नई रोचक जानकारी आप तक पहुंचाते
1: जी,
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मैं सुन पा रही हूँ कि आपके कार्यस्थल में काफी भीड़ भाड़ है
1: जी,
0: और
1: हाँ, यहाँ पे काफी मतलब जो काम करने वाले जो गांव के हैं, मजदूर लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, सब लोग यहीं पे हैं, और उसी बीच में मैं ट्राई कर रहा था, मेरा फोन लग गया। मनरेगा

0: के अंतर्गत अभी एक तालाब का गहरीकरण हो रहा है, तो जब ये गहरीकरण हो जाएगा तो आने वाले दिन में पानी जब स्टोर होगा तो क्या है कि गांव में जो भी मवेशी होते हैं, गाय बैल होते हैं, उनको पानी के लिए दिक्कत नहीं होना पड़ेगा। और क्या है कि जो अगल बगल जो प्रभावित किसान हैं, खेती के लिए भी सिंचाई करने में काम आएगा जब पानी स्टोर होगा बरसात का पानी। तो और क्या है, ऐसे में गाँव के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है।
1: जी जी जी सही कह रहे हो। तो अपने पसंद का एक गीत बता दीजिए हमें।
0: जी जी, मुझे आप सुना दीजिएगा अलका याग्निक और कुमार सानी को, आज में कोई भी अच्छा सा गाना। और मेरे साथ आप रहेंगे और बहुत तमाम सारे जो श्रोता मित्र इस गाना में रहेंगे।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत
1: हेलो।
0: हेलो आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने बारे में
1: नमस्कार
0: बताइए।
1: मैडम।
0: नमस्कार, अपने बारे में बताइए।
1: डी आर नरवानी हूँ, चकबाड़ा कैंप से।
0: तो डी आर नरवानी जी, कैसे हैं अभी आप?
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल बदलते मौसम में। कल शाम को तो 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक 3-4 घंटे लगातार इतनी बारिश हो रही थी, सावन का महीना याद आ गया। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है,
0: हाँ जी
1: या भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, तो हो सकता है इसमें भी कुछ न कुछ भलाई तो छुपी होगी।
0: जी। तो बताइए डी आर नारवाणी जी, इस बार आपको कौन सा गीत सुनाए?
1: जी सुना के मुझे आ जा, एक फिल्म है कृष्णा, उसका गीत दिन ब दिन वो मेरे दिल से क्यों दूर दूर होने लगे।

0: हेलो, आपकी बात, आपके गीत।
1: जी, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास जी, कैसे हैं?
1: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से है।
0: और मध्य प्रदेश में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे अभी क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं?
1: मौसम प्रतिकूल चल रहा है, कभी बारिश हो रही, कभी तूफान आ रहा है भयंकर, बहुत तेज हवाएं चली, बहुत नुकसान हुआ, छत भी उखड़ गई, टीन टीन उड़ गई लोगों की, और बारिश भी भयंकर हुई है।
0: तो काफी नुकसान हो गया होगा आपके उधर।
1: जी, काफी नुकसान हो गया, मूंग की फसल खड़ी थी, मूंग की फसल में नुकसान हो गया।
0: तो बहुत बहुत दुख हुआ सुनकर
1: जी, क्या किया
0: हरविलास जी,
1: जाए,
0: क्या किया
1: प्रकृति
0: जाए।
1: के आगे किसी की चल है नहीं।
0: जी, सही कह रहे हैं
1: जी
0: आप। गर्मी इतनी तेज पड़ी है कि बारिश भी बहुत ही तेज आ गई, और तो
1: जी
0: फिर
1: गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है गर्मी।
0: जी। तो कैसे आप अपनी रक्षा करते हैं इतनी गर्मी में? आप तो खेती किसानी करते हैं, तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा
1: जी,
0: धूप
1: रात
0: में
1: के
0: का।
1: समय में जाते हैं पानी लगाने और रखवाली करने जाना पड़ता है बस, और दिन में तो नहीं जाती हूँ।
0: बहुत सही कर रहे हैं आप कि रात में ये कार्य कर रहे हैं, दिन के समय में तो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां होती होंगी धूप में
1: जी
0: जाना। तो बताइए हरविलास जी, इस बार आपको कौन सा गीत सुनाएं?
1: फिल्म का नाम है बूंद जो बन गई मोती, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।

0: हेलो, आपकी बात आपके गीत
1: हेलो।
0: हेलो आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने बारे में बताइए।
1: जी पौलमी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: जी मैं सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल संगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम सरजवाड़े बोल रहा हूँ। जी
0: प्रेम साय जी कैसे हैं?
1: अच्छे हैं, गर्मी का आनंद ले रहे हैं। कहीं कहीं तो कल बारिश भी हुआ है अंबिकापुर में ताबड़तोड़।
0: हाँ, आपके वहाँ भी हुआ
1: जी
0: होगा सूरजपुर में।
1: जी हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है, खास करके यहाँ हमारे जो गांव पड़ता है हल्का फुल्का बारिश हुआ था, है ना।
0: अच्छा।
1: मैंने फेसबुक में देखा था, कई लोगों ने वीडियो डाला था अंबिकापुर का, तो कि खूब सारा बारिश हुआ है। पीजी कॉलेज के सामने पूरा मटकी मटका में पूरा पानी घुस गया था, इस तरह से मैं देखा था वीडियो में। जी
0: जी
1: और अभी तो आगामी आने वाले 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई मैम जी आप सभी को।
0: आप सभी को पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आशा है आप पर्यावरण के लिए कुछ तो करते होंगे अपनी ओर से।
1: जी, हम लोग तो करते हैं, पेड़ वगैरह लगाते हैं, है ना।
0: जी
1: और जैसे
0: जी
1: बरसात अरसात गिरता है तो, है ना, और अच्छे तरह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, है ना।
0: जी जी जी
1: और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भाई अगर पेड़ पौधा लगाना चाहते हैं तो अभी जैसे मौसम बढ़िया है, अभी गड्ढा वगैरह खुदाई करके छोड़ दें, और आने वाले समय में जैसे बरसात चालू हो जाता है तो पौधा रोप कर सकते हैं, और उसका उसका अच्छा से देखभाल भी करना चाहिए, खास करके, है ना,
0: जी जी
1: जब
0: जी
1: तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक। जी अपने अपने अनुसार जो भी फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं, है ना।
0: हाँ सही कह रहे
1: जी
0: हैं।
1: आपसे बहुत पहली दफा बात हो रही है मैम जी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को,
0: हाँ
1: लगातार 2018-19 से सुन रहा हूँ आपकी आवाज़ अंबिकापुर से, तो
0: जी जी जी
1: आपका चिट्ठी पत्री भी सप्ताह का बहुत ही शानदार रहा है मैम जी। पत्र पढ़ने का आपका अंदाज और निराला बहुत काफी अच्छा है,
0: थैंक यू।
1: इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं तो कार्यक्रम सुनते रहता हूँ आपका, जो गुंजन होता है ना, चेष्टा फरमाइश, ईमेल की गुंज, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ,
0: जी
1: आप
0: जी
1: सभी लोग अच्छे अच्छे गाना बजाते हैं, है ना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम साय जी।
1: जी
0: और आपको हमारे सभी कार्यक्रम पसंद आते हैं और आप इतनी उत्सुकता के साथ हमारे केंद्र के सभी कार्यक्रमों को सुनते हैं, इसके लिए हम
1: जी
0: बहुत बहुत
1: जी
0: आभारी हैं।
1: अब मोबाइल ऐप में आने से और लोगों का जैसे फायदा हो चुका है, कहा कि जाए तो हमारे देश विदेश के अन्य श्रोता भी सुनते हैं कार्यक्रम, और इंस्टा फरमाइश फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, और ईमेल की गूंज के तहत, है ना।
0: जी
1: और
0: जी
1: पत्र तो काफी संख्या में भी आजकल भी आते रहते हैं अंबिकापुर में, मैं देखता रहता हूँ, कभी जाता हूँ आकाशवाणी तो।
0: जी जी जी बहुत सारे पत्र आते हैं और बहुत सारे ईमेल, बहुत सारी फरमाइशें, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत
1: जी
0: सारे
1: लगाव है
0: कॉल
1: मैम जी सभी श्रोताओं का, और इस बार सम्मेलन होने वाला है, महासम्मेलन कहा जाए तो भिलाई में, है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: जैसे 19 और 20 अगस्त तक को, तो इन साल 2026 में भी बहुत सारे श्रोता वहाँ इकट्ठा होंगे और एक दूसरे को मुलाकात कर पाएंगे, और उद्घोषक उद्घोषिका भी आएंगे कहा जाए तो, सभी आकाशवाणी के भारत के कोने कोने से।
0: जी जी जी और चूंकि आप तो हमारे इतने पुराने और इतने नियमित श्रोता हैं तो आपकी पसंद भी एक से एक रहती है।
1: जी मैम जी हम लोग बचपन से ही रेडियो सुनते थे, कहा जाए तो रेडियो हुआ करता था घर में, तो बस बजता था तो पहले गुंजन वगैरह सुनते थे, है ना। इसके बाद तो आपकी पसंद गर्मी के समय में चलता था, है ना, गर्मी के समय में हम लोग रेडियो सुनते थे, जैसे 12 बजे स्टेशन चालू होता था पहले, तो 2011 10-11 से फिर पूरा कह जाए तो सुबह से पूरा 3 बजे तक हो गया है, सुबह से लेकर।

0: समय था जब जैसे कि हम लोग उस समय जैसे लोग पत्र भेजते थे, आकाशवाणी हम लोग नाम सुनते थे, तो उत्सुकता होती थी कि श्रोता कौन है, मिलने की उत्सुकता होता था उनके गांव में। जैसे गांव याद कर लिए हम लोग, तो कहीं भी आना जाना तो श्रोता से मिलना ही टाइप से।
1: अरे वाह
0: जी,
1: तो इस तरह से आप अपने श्रोता साथियों से मिलते जुलते और
0: जी जी सबसे। आजकल तो जैसे सोशल मीडिया के तहत तो भाई व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सभी लोग, तो अगर सर्च मारिए के नाम से तो सभी लोग दिख जाते हैं।
1: हाँ,
0: जी, हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से लोग बोलते हैं, कैसा दिखते हैं उन लोग, है ना, आवाज के माध्यम से पहले जानते थे।
1: जी जी जी
0: जी,
1: तो आप सबका प्रेम ही है जो हमें इतना दूर तक लेकर आया है। और तो प्रेम साय जी, बताइए आपको कौन सा गीत सुनाएं इस बार।
0: जी, फिल्म जीत का बजा दीजिएगा कोई भी गीत। कुछ दोस्तों को याद करना चाहूंगा कार्यक्रम के माध्यम से।
1: अवश्य
0: जी, कुलेश्वर राजवाड़े, अरविंद कुमार यादव, मानिकराम प्रजापति, राजकुमार नेवानी और आकाशवाणी अंबिकापुर के बहुत सारे श्रोता है, और नयनदास दीवान जी भी है।
1: जी, तो आप सभी को आपकी पसंद पर ये गीत सुनाएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम साय जी।

0: आपकी बात आपके गीत। इस कार्यक्रम में हम आपसे करते हैं फोन पर बातें और सुनाते हैं आपको आपकी फरमाइश के गीत। वक्त की कमी के कारण हम हर श्रोता को मौका नहीं दे पाते, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें फोन लगाने पर कम से कम 2 सप्ताह का अंतराल लें, ताकि हम अधिक से अधिक श्रोताओं को खुद से जोड़ पाए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर रविवार सुबह 10:30 से आपके कॉल तक। हमसे कॉल मिलाएं हमारे इन नंबरों पर 0777-4231917 और 0777-4231918। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0777-4231918 और 0777-4231917। आपसे बातें करने के लिए हम होते हैं बेकरार, आपके कॉल का हमें रहता है इंतजार। तो हमें कॉल करें हर रविवार सुबह 10:30 पर। और इसी के साथ अपनी कार्यक्रम से अपनी रेडियो साथी पॉलीमी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो।

0: सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे आपकी बात, माफ कीजिएगा, आपकी पसंद कार्यक्रम। मीडी भीप और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
2: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा, वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53.50 रुपए तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय

0: प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजे गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। पेश है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। पहले गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी और लवी श्रीवास्तव। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। लाल माता सुदामा नगर झालवाड़ से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहरबाई, प्रभुलाल बागरी। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म जन्नत का गीत। केके की आवाज़ में गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार हैं प्रीतम।

अब सुनिए फिल्म मर्डर का ये गीत। इसे लिखा है सईद कादरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने और गायक कलाकार हैं आमिर जमाल। इस गीत की फरमाइश करते हैं आप श्रोता मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाणकर, श्रीमती सरिता गुहाणकर, सिद्धांत गुहाणकर, प्रिंस एकांश गुहाणकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गुहाणकर, श्रीमती वैशाली गुहाणकर, श्वेता सुमित गुहाणकर और कुमारी ध्वनि गुहाणकर। अगला पत्र है बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र व्रिजकांत सारथी। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा वान्या सिंगरौल।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनू भैया, ए दे आगू तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: तहाँ
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 200

0: 39.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलो हर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि यदि एफएम में भी 100.2 मेगा हर्ट्ज में भी एला यदि सुन सकते
1: है। हाँ, अभी तो शुरू होगी साहब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुन हूँ आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

MM करीम के संगीत निर्देशन में नीलेश मिश्रा का लिखा गीत सुनिए। फिल्म जिस्म के इस गीत को आवाज़ दी है श्रेया घोषाल ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं शिवपुरी से अरुण जैन, मोनिका जैन, इंदौर से वंदना, पुणे से अर्चना साने, कोटा से कविता शर्मा, हरिओम शर्मा, बेबी प्राहिता, रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमल सिंह डगला, हैप्पी डगला, जीएस नायक, शोभा नायक, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मितलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुपरिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा।

श्रोताओं माफ़ करें, अभी आप जहर फिल्म का गाना सुन रहे थे, जिसके गीतकार हैं सईद कादरी, संगीतकार हैं रूप कुमार राठौड़ और आवाज़ आतिफ असलम की है।

अगले गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। आयाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश। रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता नारायण, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म जिस्म का ये गीत, श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीतकार हैं निलेश मिश्रा और संगीत MM करीम का है।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: अब सुनिए फिल्म क्रिमिनल का यह गीत। इसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है MM करीम ने, और गायक कलाकार हैं कुमार शानू और अलका याग्निक। इस गीत की फरमाइश करते हैं आप श्रोता देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेबवानी, संगीता नेबवानी, आकाश नेबवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता, सागर, आयुषी, हनी और सभी परिवार के सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी,

अगले गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, राहुल वर्मा, गोपी वर्मा, भूपेश वर्मा और दीपेश वर्मा। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म गैंगस्टर का ये गीत केके की आवाज़ में, जिसके गीतकार हैं सईद कादरी और संगीतकार हैं प्रीतम।

अब सुनिए फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का यह गीत। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने, और गायक कलाकार हैं राहत फ़तेह अली खां और तुलसी कुमार। इस गीत की फरमाइश करते हैं आप श्रोता अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदय खान, अस्मा, सालिया शोएब खान, मुस्तबा खान, रौफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योतिष ठाकुर और रियांश ठाकुर।

तो साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोताओं ने रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, चार मीनार चौक पंडरिया से दरिया नामल अनीता मोटवानी, राजेश रेशम अनिलराज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल भूमिका सुशीला दादी। अब सुनिए फिल्म कहो ना प्यार है का यह गीत। इसे लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने और गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

0: 55 मिनट होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए आज मतदान चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर 31,928 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर करीब 1,02,800 मतदाता वोट डालेंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, जबकि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हो रहा है। पंचायत चुनावों की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने इस अभियान को जनभागीदारी के माध्यम से एक व्यापक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गांव में अमराई यानी आम के बगीचे लगाने की परंपरा को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आम का विशेष महत्व है। महोत्सव में देशभर के 400 से अधिक किसानों ने आम की 250 किस्मों के लगभग 2000 प्रादर्श प्रदर्शित किए। इस दौरान आम की विभिन्न श्रेणियों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने धमतरी जिले में पुलिस की पाठशाला का लोकार्पण किया। पुलिस की पाठशाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें निशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। यह लाइब्रेरी उन गरीब और मेधावी विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों और पुस्तकों के अभाव में नहीं कर पाते। लोकार्पण अवसर पर पुलिस महानिदेशक अरुणदेव गौतम ने कहा कि यह पाठशाला शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज हवा चलने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने में होने वाली देरी के कारण जून के पहले पखवाड़े में हीट वेव चल सकती है। आने वाली नमी बस्तर में भारी गर्मी को रोकेगी मगर मध्य और उत्तरी इलाके पहले पखवाड़े में गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की रफ्तार कम हो रही है जिसकी वजह से इसके छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावित तारीख आगे खिसकती हुई नजर आ रही है। कांकेर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 32,60,000 रुपए से ज्यादा कीमत की चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत आज हो रहा है मतदान। प्रदेश में प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के अनेक हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11 बजकर

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब सुनिए एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है, आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और W सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स,

0: फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्य धारा विद्यालयों में लाया गया।

0: ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक

0: भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी।
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है
1: लेकिन
0: आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIET NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी।
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंच

0: पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए। आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो। आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा।
1: जी जी,
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल,
0: पीली टाइलें कैसी हैं? उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं।
1: जी,
0: उनके उभारों को महसूस कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी,
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें। तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी,
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना, जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है, जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है। और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी,
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए, वहाँ पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी। और एक और सरल उपाय है, आजकल तो गूगल हम सब की मदद के लिए है ही है। गूगल पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक CIT NCERT, आपको सीधा वहाँ उसी पेज पे ले जाएगा और आप वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी,
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी,
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से, NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी,
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी,
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं।
1: जी,
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी,
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल, तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक

0: को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी।
1: जी
0: मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके।
1: जी
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा।
1: जी
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे।

99 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन।

एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो मित्र करण सिंह। श्रोताओं, उम्र केवल वर्षों की गिनती नहीं बल्कि अनुभवों, यादों और एहसासों का नाम है। कभी उम्र प्यार को परिपक्व बनाती है, कभी सपनों को नई उड़ान देती है। उम्र एक ऐसा शब्द है जो केवल जन्म से लेकर आज तक के वर्षों का हिसाब नहीं है। उम्र दरअसल उन सपनों का नाम है जो आँखों में पलते हैं, उन उम्मीदों का नाम है जो दिल में जगती हैं, और उस जोश का नाम है जो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

अभी आपने फिल्म कर्ज का ये गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और आवाज़ किशोर कुमार की थी। इस गीत को सुनकर आप सभी ने अंदाज तो लगा लिया होगा आज के चयन का शीर्षक क्या है। मैंने ठीक कहा ना दोस्तों? उम्र। ये शब्द सुनते ही अक्सर हमें बीते सालों का एहसास होता है, लेकिन प्यार की दुनिया में उम्र का अर्थ कुछ और ही होता है। वहाँ उम्र घड़ी की सुइयों से नहीं, दिल की धड़कनों से मापी जाती है। कभी कोई रिश्ता कुछ दिनों में सदियों जितना गहरा हो जाता है, और कभी पूरी उम्र भी किसी की यादों के नाम हो जाती है। कितनी खूबसूरत बात है कि इंसान अपनी उम्र लंबी होने की दुआ बाद में मांगता है, लेकिन अपने प्यार की उम्र लंबी होने की दुआ पहले मांगता है।

0: अभी आपने फिल्म वारिस का ये गीत सुना। गीतकार थे वर्मा मलिक और संगीत उत्तम सिंह का था। गायक कलाकार लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह थे।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: इश्क की कोई उम्र नहीं होती। कभी ये दिल की दहलीज पर दस्तक देता है तो कभी छोटी सी उम्र में ही दिल को अपने रंग में रंग देता है।

अभी आपने फिल्म बैराग का ये गीत सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। आवाज़ लता मंगेशकर की थी।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज।

0: नहीं बढ़ी नहीं।
1: हाँ
0: ताहा
1: तो राव ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
0: हो
1: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
0: हैं। हाँ, अबे तो शुरू है कि साहेब।
1: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
0: किसान वाड़ी।

दुआएं जब दिल से निकलती हैं तो उनमें सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें मोहब्बत होती है, अपनापन होता है और किसी अपने की लंबी उम्र की सच्ची कामना होती है।

अभी आपने फिल्म आई मिलन की बेला का यह गीत सुना। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। गायक कलाकार थीं लता मंगेशकर। न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। इन खूबसूरत पंक्तियों को लिखा है इंदिवर ने और संगीत और आवाज़ दी है जगजीत सिंह ने। पेश है फिल्म प्रेम गीत का ये अंतिम गीत।

0: श्रोताओं, आप तो समझ ही गए होंगे आज के कार्यक्रम का शीर्षक था उम्र। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है, दिन का एक बजने वाला है। हिंदी समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपये से लेकर 53.50 रुपये तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी

0: 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। खेती की बात में अब आप सुनेंगे पशु आहार विषय पर जानकारी।
1: गर्मियों के मौसम में पशुओं की भूख कम हो जाती है और प्यास बढ़ जाती है। इसके लिए आहार में पोषण प्रबंधन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रीष्मकाल में हरे चारे की अधिकता सूखे चारे की तुलना में अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 70-90% पानी, जो शरीर में नमी बनाए रखता है। मक्का, लोबिया, चरी और ज्वार जैसे हरे चारे उपयुक्त हैं। पशुओं को आहार देने का समय भी निश्चित होना चाहिए। दोपहर की तेज गर्मी में चारा देने से बचना चाहिए। पशुओं को केवल सुबह जल्दी और शाम को देर से अर्थात ठंडे समय में चारा खिलाना चाहिए। पशुओं को आहार भिगोकर देना चाहिए। भूसे और दाने चूनी चोकर को खिलाने से कम एक घंटा पहले पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इससे आहार ठंडा हो जाता है और पाचन में आसानी होती है। ऊर्जा और खनिज लवण की अधिकता होनी चाहिए। गर्मी में तनाव को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स युक्त ऊर्जावर्धक आहार और खनिज मिश्रण देना चाहिए। पोटेशियम युक्त खनिज मिश्रण गर्मियों में विशेष रूप से लाभदायक होते हैं। पशुओं को दिन में कम से कम 3-4 बार स्वच्छ और ताजा पानी पिलाना चाहिए। संभव हो तो पानी को छायादार स्थान पर रखें, जिससे पानी ठंडा रहे और पशुओं को पीने में अच्छा लगे। एक आदर्श और संतुलित आहार में अनाज, जिसमें मक्का, जौ, गेहूं या बाजरा हो, खली, जिसमें सरसों, मूंगफली या बिनौला की खली हो, चोकर या चूरी, गेहूं का चोकर और चने या दालों की चूरी, नमक, आहार में पर्याप्त मात्रा में साधारण नमक अवश्य मिलाना चाहिए। दुधारू पशुओं, गाय और भैंस में गर्मियों के दौरान दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए पोषण और प्रबंधन में बदलाव करना अनिवार्य है। गर्मियों में दूध बढ़ाने के लिए घर पर तैयार दलिया बहुत प्रभावी होता है। 1-1.5 किलोग्राम मोटा पिसा हुआ गेहूं, 50-100 ग्राम सौंफ ठंडी तासीर हेतु और 100 ग्राम मिश्री। गेहूं को अच्छी तरह पकाकर दलिया बना लें। पकाने के बाद इसमें सौंफ और मिश्री मिलाएं। इसे ठंडा करके खिलाएं। बेहतर परिणाम के लिए इसमें 100 मिलीग्राम प्रोटीन सी लिक्विड भी मिलाया जा सकता है। दूध उत्पादन के आधार पर दाना अवश्य देना चाहिए। गाय के लिए प्रतिदिन 2.5 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो अतिरिक्त दाना मिश्रण देना चाहिए। भैंस के लिए प्रति 2 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना मिश्रण देना आवश्यक है। भैंस को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार में 35% अनाज, मक्का, जौ, 32% खली, सरसों या बिनौला और बाकी चोकर या चोरी शामिल करें। दूध की मात्रा और गुणवत्ता सुधारने के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग भी कर सकते हैं। शतावरी और अश्वगंधा, ये जड़ी बूटियां हार्मोनल संतुलन बनाए रखती हैं और दूध उत्पादन को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार सफेद जीरा, 500 ग्राम जीरा और 500 ग्राम सौंफ का मिश्रण पाचन और दूध बढ़ाने में सहायक होता है। गर्मियों में रूमन के स्वास्थ्य के लिए 50-100 ग्राम मीठा सोडा खिलाने से पाचन ठीक रहता है और फैट कम नहीं होता। दाना हमेशा दिन में 2 बार समय अनुसार दें। पशु के आहार में 15-20 ग्राम नमक और 50-100 ग्राम खनिज मिश्रण अवश्य शामिल करें। दुधारू पशुओं को प्रतिदिन 60-80 लीटर साफ और ठंडा पानी पिलाना चाहिए।
0: पशु आहार विषय पर अभी आप खेती की बात का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

हमर घर गोसाई सुने वाला जम्मो बहनी भैया सयान लिका छुआ जम्मो संगवारी मनला लाली बहन के डहले राम राम जय जोहार। और भाई बहनी का काम बूता होता है, देखी गर्मी तो लागबे करता है और अब देखी गलो लइका मन के भी स्कूल शुरू होए वाला है। तो भाई लइका मन राउर मन झटकुन अपन तैयारी कर ली भाई स्कूल जाए में, कहे कि जब पढ़िया तबे तो आगे बढ़िया कथे ना, तो भाई ओकर तैयारी पहले से रहना चाहिए। काहे कि अभी देखी छुट्टी रही तो लइका मन के थोड़ा सा आदत हर घर के जैसे होएगी से कि कुछ कहानी सुनत हैं चाहे कुछ कुछ बनाता हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब स्कूल जाए के भी तैयारी कर ले। आओ देखी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अब तो हमर गांव गोई में भी ऐसा होता है कि पहले जैसे नहीं है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, तो लड़की मन ला भी बहुत सारा सरकार के द्वारा भी शिक्षा में आगे बढ़ाए बर प्रोत्साहन मिलता है और उकरे परिणाम हवे कि आज हमर गांव गई के लेके लड़की मन भी बहुत नाम रोशन करता है और जब भी रिजल्ट निकलता है तहाँ एकदम आगू हैं और बढ़िया सफलता प्राप्त करता है, हर सुविधा ला लेता है। और भाई लड़का मन लड़की मन दोनों भाई ऐसने पढ़ें और आगे बढ़ें। बहनी मन ला भी चाहिए, जैसे कोई कोई बहनी मन कथे कि हमर पढ़ाई हर छूट गईस शादी हो गईस, तो हमन देखत ही आजकल गांव गई के भाई जो ससुराल वाला मन है ओमन भी बहुत साथ देता है। हमर घर कति ही कितना थे लड़की मन आए के और बढ़िया बढ़िया शिक्षा प्राप्त करता है, बढ़िया बढ़िया कोर्स ला भी करता है। अब तो पहले जैसे नहीं है, अगर बहनी मन ऐसे सोची कि हमन नहीं पढ़े ही तो घर बैठे भी कई ठन शिक्षा है जिला हमन प्राइवेट कर सकता ही आगू बढ़ सकता ही, बहनी मन पढ़ सकता है। और मीडिया के जमाना है, हर घर में मोबाइल हवे, अपन समय ला बर्बाद जहन करी ओमें अपन ज्ञान ला बढ़ाई शिक्षा ले, कई ठन ओमें भी माध्यम है जिला लेके हमन अपन रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता ही और आगू बढ़ सकता ही। और आज के आधुनिक युग में बहुत जरूरी है हमन ला शिक्षित होना, कहे कि हिसाब किताब से लेके चाहे कोई भी काम हवे जब हमन पढ़े रहब तबे ना हर चीज ला समझब और अपन लइका मन ला भी आगे बढ़ाब। तो देखी शिक्षा कर तो बात करबे करें, लेकिन बहनी मन आजकल घर में बैठे बैठे भाई बहुत सारा काम ला करता है और आगू बढ़ता है, बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे गांव गई मन के बहनी मन महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी मिलजुल के भी बहुत बढ़िया आय प्राप्त करता है और आजकल भाई महंगाई के ज़माना में बहुत जरूरी है आर्थिक रूप से बहनी मन कर सबसे पहले मजबूत होना। तो ऐसे नहीं कहब कि घर से बाहर जाब तबे हमन पैसा कमा सकता ही, घर बैठे भी हमन कर जो भी रुचि है ओला हमन करके और बढ़िया आय प्राप्त कर सकता ही और अपन घर के स्थिति ला भी सुधार सकता ही, घर कर भी काम हो जाही और घर बैठे कई ठन महिला गृह उद्योग ला भी बहनी मन चलाता है। हमारे गांव गई के बहनी मन कृषि उद्योग ला भी करके आगू बढ़ाता है, बहनी मन मिलजुल के कई ठन काम सिलाई कढ़ाई बुनाई भी करीन है, सिलाई सेंटर भी खोलना है। और देखिए आजकल कहीं पर जैसे स्कूल कॉलेज है आसपास में तो एक टिफिन जो सेवा है भोजन कर ओकर भी माध्यम से बहनी मन आगू बढ़ता है और होएगी इस ब्यूटी पार्लर खोल के भी बहनी मन घर बैठे काम ला कर सकता है। देखिए आजकल महंगाई के ज़माना में पानी हर भी कहीं बाहर जाब तो सिथिया में नहीं मिले, तो हमन ला चाही कि हमन हर कार्य ला करके और आगू बढ़ी घर बैठ के। जो बहनी मन के पास गाय भैंस गरु है ओमन भी देखी दुग्ध जो दूध से बनल उत्पाद कर भी उद्योग ला करता है, पनीर बेचता है, दही दूध मट्ठा छोटे छोटे दुकान खोलिन है गाँव में गवई में और बहुत बढ़िया आय ला प्राप्त करता है। और देखी गोबर से बने वाला जो आजकल उद्योग गृह उद्योग है महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ के 8-10 बहनी मन जुड़ के और गोबर से जो चीज़ ला बनाता है दिया बनाता है धूप बनाता है ओकर से भी बहुत आय प्राप्त करता है। इतना सुघर सुघर सुंदर सजावटी चीज़ बनाता है कि ओला देख के पता ही नहीं चली कि भाई वो हर गोबर से बनी सा है। तो ऐसे ही बस जरूरी है कथे ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो जरूरी

बस हमन ला सोच के अपन रुचि के अनुसार हमन अपन कदम बढ़ाई और अपन समर्पण से निष्ठा से लगन से हमन कोई भी काम ला करब तो हमन जरूर आगे बढ़ब और हमर भविष्य हमर परिवार के भविष्य भी उज्जवल होही और खुशहाल भी होही। तो देखी गोट बात तो ढेरे अकन करब, चलिए अब एक ठन छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला सुन ले लक्ष्मण मस्तूरिया कर गाल।

हाँ तो सुघर एकन छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला सुनेन लक्ष्मण मस्तूरिया और संगता मनकर गाल रहीस। देखिए आज अतिरिक्त सोमवार है और आज के दिन हमन कुछ घरेलू खास नुस्खा ला लान थी, तो आज गर्मी से बचे बर कुछ खास घरेलू नुस्खा ला लेके आए हूँ। देखा नौता पहाड़ चलता है और लइका मन के भी छुट्टी हुई से, और जहाँ हवा भी करता है हवा आंधी कहीं कहीं, तो वहाँ आमा हर गिरता है तहाँ लइका मन तो कूद के चले जाते हैं आमा के नीचे, तो उमनला घाम भी लगे सकता है और उमनला देखी भाई बचाना है सब चीज़ से, कहे कि आंधी हर आयल तो डाली वाली टूट के उमनला नुकसान भी हो सकते है, लइका मनला चोट लग सकता है, तो बहनी मन जरूर ध्यान दें नान लइका मनला। और देखी बिहाने और सांझे अपन काम मन ला उसराए ली, और कहीं भी बाहर जाना है तो नाक कान हमेशा हमन कहत रहती सूती कपड़ा से भाई नाक कान ला तोप के जाना है, और पानी कर कमी शरीर में नहीं होए देना है, नहीं तो देखी पानी कर कमी होए से और तुरंत बीमारी हर धर लही और डॉक्टर के पास जाना पड़ी, तो देखी लू से बची और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी। और कहब कि भाई लइका मन कथे कि हमन कितना पानी पी, अब तो हमन घर में ही हमर कई ठन चीज़ हवे, सौंप रथे, पुदीना रथे, नींबू रथे, ओकर हमन शरबत बनाए के लइका मन ला पिलाब, तो मन ला बढ़िया भी रखी, अलग अलग स्वाद भी लगी और मन खास मन पी भी लही और भाई स्वाद से। और देखी सियान मन कोई कोई मन ला भाई शक्कर के बीमारी है, तो उमन कर उमे हमन गुड़ ला डाल सकता ही, आम कर पना भिलू में बहुत बढ़िया रहे, हर घर घर में गांव में आम रहे, तो आम ला बढ़िया से उबाल के चाहे भूंज के ओला बढ़िया ओकर छिलका निकाल के और गुठली ला निकाल के बढ़िया घोल लेना है, और उमे जे मन ला शक्कर के बीमारी है तो उमन भाई थोड़ा सा गुड़, थोड़ा नमक, पुदीना पत्ती, धनिया पत्ती और नमक मिला के ओकर चटनी जैसे बना के ओमे मिलाए के इतना बढ़िया पाना बनी ना कि स्वाद से लइका मन का और सियान मन का जमो झन पीही और स्वास्थ्य भर भी ये पाना हर बहुत बढ़िया रहेल। अब देखी लू लग गई से तो ये जो आम ला हमन उबाले रथी ओकर गुदा ला तलवा में हमन पैर कर तलवा में हाथ के तलवा में ऐसे रगड़ भी देती तो ओकर से भी हमर बचाव होते, संगे संगे प्याज ला कूच के भी हमर पैर तलवा में करे से ठंडक होए। अगर ये भी नहीं है तो इमली रथे घर में तो ओकर ला भी भिगाए के ओकर गुदा ला भी हाथ पैर के तलवा में रगड़ सकता ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी, पानी फल खीरा ककड़ी पपीता घर में जो भी है वही ला हमन खाए के अपन शरीर कर पानी कर भी कमी हुए, और सबसे ज़रूरी बात ताज़ा भोजन करी और संतुलित आहार ले, ऐसे नहीं कि हमन ज़्यादा तला भुंजा।

खा ली थी, तो कैसे भी अभी गर्मी में तबीयत खराब होए के हो जाए। तो देखिए यही छोटा छोटा घरेलू उपाय है जिला करके हमन बात सकता ही। चलिए अब एक ठन भोजपुरी गीतला सुनी रामलोचन यादव और संगता मंदकर गाल।

हो तो सुघर कन भोजपुरी गीत ला सुनेन रामलोचन यादव संगता मनकर गाल रहीस। पहिनी हो देखी हमर अब गर्मी हर आए वाला है, अब गर्मी हर आइस नहीं है कि हमन देखते कि पानी कर और जल कर

संकट होवत है। और आजकल कुछ समय से हमन देखती कि हमर पर्यावरण से संबंधित कई ठन जो हमन ला प्रकृति से मिलीस है ओकर असंतुलन हो गईस है पर्यावरण हर। और देखी जल कर भी संकट अब बिल्कुल अभी गर्मी आही नहीं कि हर जगह देखती कि हमन पानी बर बूंद बूंद बर इंसान मन तरसता है। तो देखी हमन ला हर चीज ला देख के ओला सोच समझ के जल संकट ला भी करे कर हर कोई की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हमर क्षेत्र में बढ़िया पानी मिलता है तो हमन हर हदाए के नहाता ही तो कपड़ा धोता ही तो कपड़ा धोता ही नल हर खुला है और पानी हर बहता है। कोई नल हर खराब है तो बूंद बूंद गिरता है तो हमन ओला देख के अनजान करते अरे बूंद बूंद से का हो ही नहीं बूंद बूंद से ही हमर बचाव तब हमर जल संकट हर दूर हो ही। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है हमन कहीं यात्रा में भी जाता ही कहीं भी रेलगाड़ी में जाता ही बस में जाता ही कहीं भी जाता ही कहीं के भी पानी बर्बाद होता है वो हमर जिम्मेदारी है। तो देखिए जल बचाए कर कोशिश करी ओकर विवेकपूर्ण उपयोग करी। और देखिए हमर गाँव गोई में आसपास में ढेरे अकन नदी नाला तालाब पोखर हर जगह रहत रहीस। पहले के राजा महाराजा मने ही करत रहिन जनता बर हर जगह में बड़ा बड़ा तालाब बावली कुआं खुदवाए के रखें। लेकिन आज हमन देखता ही कि धीरे धीरे जल कर इस तरह कम होता है। तो हमन ला ए मन ला बचाना है अगर हमर आसपास जल कर स्रोत हवे तालाब है चाहे ढोड़ी है चाहे कुआं है तो वहाँ हमन ला फिर से पुनर्निर्माण करके उमन ला फिर से बचाए कर कोशिश करना है। जल कर उपयोग उतना ही करी जितना जरूरत है कहे कि जहाँ हमन एक अति बूंद बूंद बहाता ही वहाँ कोई सर जगह बूंद बूंद बर तरसता है। तो जल का संकट तभी दूर हो ही जब हमन एकजुट होकर एकर बर संकल्प ले हम। तो जरूर जल संरक्षण कर उपाय करी। अब चली एक ठन छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला सुन ली ममता चंद्राकर कर गाल।

हो तो सुघर एकदम छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला सुनेन ममता चंद्राकर कर गाल रहीस। बहनी हो जो ये गर्मी कर बेरा रहेल हमर जो नान नान शिशु मन रथे ओमन बर बड़ा परेशानी कर रथे, घमोरी हो जाते आओ देखी ओमन कर देखभाल नहीं करब तो ओमन जल्दी से गर्मी में बीमार भी पड़ जाते। फिर हमन ला बार बार ओमन ला भाई डॉक्टर पास दिखाना हवे। ओकर से पहले है कि हमन पहले से ही ओमन कर ध्यान रखिए, गर्मी में सूती कपड़ा पहनाई हल्का पहनाई। आओ देखी ओमन ला ज़्यादा कूलर और पंखा के ज़्यादा हवा में भी नहीं रख सकता ही और ज़्यादा गर्मी में भी नहीं रख सकता ही, तो ओमन कर खास ध्यान रखी ताकि हमर लड़का मन स्वस्थ रहें। संगे संगे हमर सियान मन ला भी ध्यान देना है बहनी मन ला। भाई सियान मन भी तो ओमन कर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाते, कोई भी मौसम हराते तो ओमन ला मौसम के अनुसार हमन ला खान पान भी देखना हवे, ओमन का रख रखाव भी देखना है। और सबसे पहले जरूरी है गर्मी कर बेरा में साफ सफाई। हमन जहाँ कपड़ा धोता ही बर्तन मांजता ही वहाँ के पानी बहता है ना, ओकर नाली ला बढ़िया से अपन पास में ही भाई बढ़िया से नाली ला करके ओकर पानी ला भी हमन थोड़ा सा कुछ धनिया पुदीना बोए देहब तो ओकर उपयोग भी कर सकता ही, बढ़िया से भी हो ही और चिखला कांदा भी नहीं हो ही तो माखी मच्छर भी नहीं पनप ही। तो ऐसे छोटा छोटा चीज़ ला हमन करके और अपन घर कर भी साज सज्जा भी कर सकता ही, ओकर से फायदा भी ले सकता ही। संगे संगे हमर जो घर में पालतू पशु मन रहते हैं पशु पक्षी मन ओमन कर भी तिहा जतन करना बहुत जरूरी है, चाहे गाय है बैला है मुर्गी है छेरी पाली ही, तो ओमन ला भी दोपहरिया में छाँव में रखना जरूरी है। ओमन जग जरूर पानी रख दी कहे कि ओमन ला प्यास लगी तो भाई ओमन कैसे कर ही बताए तो नहीं सकता है, तो हमन ला ही ओमन कर तिहा करना है। पानी ओमन कर खाए बर अच्छा रखना है, ओमन कर जगह ला साफ सुथरा रखना है ताकि ओमन भी बीमार या रोग से ग्रसित ना हो। आओ देखी भाई हमर सबसे पहले जरूरी है कि हमन साफ सफाई तो रखे ही और जागरूक रही हर क्षेत्र में हर चीज पर जागरूक रही आगू बढ़ी। तो देखी अब बात करत करत भाई बेरा हर भी बताता है कि चले के बेरा हो कि, तो अब लाली बहन ला यहीं दे विदा। यही कहना चाहूँ साफ सफाई रखी स्वस्थ रही खुश रही और खुशियाँ बांटत रही। राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बेल्ट 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अब आप सुनिए श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। गायकी की दुनिया की एक मधुर आवाज़ सुमन कल्याणपुर अब हमारे बीच नहीं रही। उन्हें नमन करते हुए सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये गीत, फिल्म बात एक रात की, जिसके गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीत एचडी बर्मन का है। इस गीत की फरमाइश भेजी है आप श्रोताओं ने

नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया। पश्चिम बिहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा। अगली ईमेल है मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति, डीकेश साहू, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। राजकोट से प्रवीण सोनी, पूजा, पायल, कंचन, कुसुम, कलावती, जैनीश, जूली और जगदीश जौहरी। अगली ईमेल करते हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा। मदनपुर कवर्धा से हमें मेल की है श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। मोताला बाज़ार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वज़ीर, सोहेल शेख, सैयद तैमूर, शमीर खान, अजलान। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह।

अब सुनिए फिल्म मिली का ये गीत। इसे लिखा है योगेश ने और संगीत दिया है HD बर्मन ने और गायक कलाकार हैं

किशोर कुमार। इस गीत की फरमाइश करते हैं आप श्रोता डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर। अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय, गजनन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। अगली मेल भेजी है कुम्हार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और सानिका दले। पुणावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने। हरियाणा से हमें ईमेल करते हैं अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। और उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी, बाबू भाई। शाहूनगर यवतमाल से ईमेल करते हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी। छत्रपति संभाजीनगर से ईमेल से फरमाइश भेजी है राजेश साबले, पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, श्रीमती शीतल राजेश। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी ने।

अब सुनिए फिल्म बॉबी का ये गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गायक कलाकार हैं शैलेंद्र सिंह। इस गीत की फरमाइश करते हैं आप श्रोता तिलक नगर नई दिल्ली से आरएस स्वीटी और आरके शुक्ला, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सारसताल सोनगरा छत्तीसगढ़ से प्रेमसाय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैंकरा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले, ग्राम लसूड़िया मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद डांगी। अगली मेल भेजी है अकोला से के शरद पांचपोर, श्रीमती शोभा पांचपोर, बेबी वैदेही, विहान, बाबू रश्मि, अक्षय और अभिनव पांचपोर ने।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए। फिल्म ब्रह्मचारी के इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, राजौरी गार्डन नई दिल्ली से हमें मेल भेजी है ध्वनि और सानवी ने, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सीटी दीवाना, अनारकली बाज़ार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या भाई, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, लछनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हमें मेल करते हैं अब्दुल गफ़ार डावर डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, शिवपुरी से अरुण जैन, मोनिका जैन, इंदौर से वंदना, पुणे से अर्चना साने।

अब सुनिए फिल्म प्रिंस का ये गीत। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। इस गीत की फरमाइश करते हैं आप श्रोता जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, शुभम बेंडे। बाबा कुटी रायगढ़ से हमें मेल करते हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान, डुग्गू। पदमपुर जिला गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा।

मुताला महाराष्ट्र से ईमेल की है विजय सुरलरकर रतन माला कुमकुम सुरलरकर ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी संगीता आकाश आयुषी सागर यशी हनी पूजा सीता और परिवार के सदस्य। गांधी बाग अकोला से ये गीत सुनना चाहते हैं रमेश कटनकर वैशाली कटनकर धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीमा बेगम।

अब सुनिए फिल्म हमराही का ये गीत। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम। इस गीत की फरमाइश करते हैं आप श्रोता ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर सह राजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू सिंह मरावी। जनकपुरी सहारनपुर से ईमेल करते हैं जॉन डिस्ट्रैक्टो, रॉजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो।

हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से पीयूष कुमार, रोहित राज, आर्यन राज।

0: इस गीत के साथ ही श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी

0: वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज, अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेताए, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि ये समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातक को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार

0: बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत कंधा। कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई इस गज़ल से। शायर हैं हसरत जयपुरी।

इस गज़ल के बाद अब सुनिए केके का गाया ये गीत। इसके गीतकार और संगीतकार विपिन मिश्रा हैं।

गीत गंधा कार्यक्रम में अब सुनिए अरमान मलिक का गाया ये गीत, जिसके गीतकार हैं रश्मि विरग और संगीत अमान मलिक का है।

आइए अब सुनते हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में शायर कतील राजस्थानी की ये गज़ल।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अरमान मलिक की आवाज़ में ये गीत। गीतकार हैं कुमार और संगीत रोचक कोहली का है।

इसके साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सभा समाप्त होने से पहले अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां का सरोद पर बजाया राग स्वर समीर। रात्रि 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन और रात 9:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुन सकते हैं। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का प्रसारण रात 8 किया जाएगा। किसान अपना कार्यक्रम चौपाल सुन सकते हैं रात 7:20 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम माधुरी का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे रामलल्लू पांडे और साथियों के गाए भोजपुरी लोकगीत और मोहनदास और साथियों के गाए सरगुजिया लोकगीत।

युवाणी में शाम 5:30 पर आज के आकर्षण होंगे युवा सोच, इंद्रधनुष और फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का समय है शाम 5:00। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। दोपहर के 3 बज चुके हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 KHz और FM बैंड 100.2 MHz पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5:00 आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा

0: लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोड़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडीह, दातीढाप, गढ़गांव, बरडाण, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटा पानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ा माचा, चट्टान पारा, महुआडीह, खुटसेरा, पतेबहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 124 है। ये आमगांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कोदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहित शर्मा की आवाज़ में गाए इस भजन के साथ। शब्द रचना है प्रीति श्रीवास्तव के और धुन बनाया है पीयूष रंजन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए चांद के स्वर में कमल द्रविड़ का लिखा ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए अशोक खोसला की आवाज में अभिलाष का लिखा ये भजन।

अनुराधा पौडवाल की गाय इसी भजन के साथ कार्यक्रम भजन संध्या आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

जिनके बिना ना सुबह अच्छी लगती है ना शाम, जिनकी दुआओं से रोशन है अपना हर मुकाम। दुनिया में सबसे अमीर वो इंसान होता है जिसके सर पर होता है माता पिता का नाम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ज्ञान, मनोरंजन और जानकारियों से भरा अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपकी दोस्त चंचला यादव। लेकर आई हूं एक ऐसी बातचीत जिसे सुनते ही दिल अपने आप थोड़ा भावुक हो जाता है, थोड़ा मुस्कुरा भी देता है और शायद आंखें भी नम हो जाएं। माता पिता का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों। आज पेरेंट्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल की दुनिया में लोग पैसे कमाने की रेस में इतने बिजी हो गए हैं कि घर में बैठे उन दो लोगों को ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और ज़िंदगी जीना सिखाया। दोस्तों सच बताऊं, जब हम छोटे थे ना तो माँ हमारी छोटी सी चोट पर पूरी रात नहीं सोती थी और पापा खुद पुराने जूते पहन लेते थे लेकिन हमारे लिए नया बैग ज़रूर लेकर आते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे मम्मी पापा हमारे लिए सिर्फ कॉल बाद में कर लेंगे बन जाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, जब इंटरनेट स्लो हो जाए तो गुस्सा तुरंत आता है, लेकिन जब माँ दो बार खाना खाने बुलाए तो कहते हैं अरे यार अभी आई ना। दोस्तों पेरेंट्स डे सिर्फ एक दिन नहीं है, ये वो मौका है जब हम अपने माता पिता को ये एहसास दिला सकें कि उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनकी डांट और उनका प्यार सब हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। आज के युवा अक्सर कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो फ्रीडम भी उन्हीं पेरेंट्स की बदौलत है जिन्होंने अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर दी ताकि हमारी मुस्कान बनी रहे। याद रखिए दोस्तों, दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे जो हमारी सफल

पर ताली बजाएंगे। लेकिन माँ बाप वो होते हैं जो हमारी हार में भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। और सच कहूँ, माँ की रोटी और पापा की चिंता, इन दोनों का कोई रिप्लेसमेंट आज तक नहीं बना और ना ही कभी बनेगा। तो दोस्तों, आज पेरेंट्स डे पर अगर आप अपने माँ पापा से दूर हैं तो बस एक कॉल कर लीजिए, और अगर पास हैं तो बिना किसी वजह के उन्हें गले लगा लीजिए। यकीन मानिए, उनके चेहरे की मुस्कान किसी भी महंगी दौलत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। माता पिता की दुआओं में बड़ा असर होता है, उनके चेहरे पे ही अपना घर होता है। जो झुककर उनके कदमों को छू लिया जाए तो ज़िंदगी का हर सपना बेहतर होता है। तो अपने माता पिता को वक्त दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि यही वो दौलत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। इसी प्यारी सी बात के साथ आइए सुनते हैं बेहद ही खूबसूरत सा गीत फिल्म हम साथ साथ हैं से।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम इंद्रधनुष की ओर।

स्वागत है आप सभी का इंद्रधनुष कड़ी क्रमांक 74 में। दोस्तों, आज की कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। प्रश्न एक बार फिर, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। प्रश्न एक बार फिर, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तीसरा प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। प्रश्न एक बार फिर, साइमन कमीशन भारत कब आया था। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। प्रश्न एक बार फिर, हाल ही में किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। दोस्तों, पांचवें प्रश्न के लिए पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना उसमें आपको फिल्म का नाम बताना है। अब मैं आपको पिछली कड़ी के सवालों के सही जवाब और विजेताओं के नाम बताती हूँ। पिछली कड़ी का हमारा पहला प्रश्न था, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। हमारा दूसरा प्रश्न था, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब है शेरशाह पूरी। हमारा तीसरा प्रश्न था दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारा चौथा प्रश्न था, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, पांचवें प्रश्न के लिए हमने आपको एक गीत के कुछ अंश सुनवाए थे। गीत के बोल हैं,
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना उसमें आपको गीतकार का नाम बताना था, जिसका सही जवाब है हसरत जयपुरी। अब मैं आपको पांचों प्रश्नों के सही जवाब देने वाले विजेता साथियों के नाम बताती हूँ। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, लोखेलाल वर्मा। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, भीमा, वैभवी और विभूति साहू। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले। लोरमीग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी। भटीपुर महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी, पंकज और आयुषी गुप्ता। ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, आशुतोष अंगारे। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर। गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुषारनी और खुमेंद्र मसिया। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, लावण्या और पुनिका पाल। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। ग्राम पीपरलोट सरगांव जिला मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। खम्हरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीणा, अश्विनी और विपुल कांबड़े। कर्मा चौक लोहारी डीह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे। अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। ग्राम धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार और कुमारी कृष्टि पटवा। आप सभी विजेता साथियों को

ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने आपसे क्रम इंद्रधनुष में जो भी प्रश्न पूछा उसका जवाब आप हमें पत्र और मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है, क्रम इंद्रधनुष युववाणी अनुभाग, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड 49701। हमारी ईमेल आईडी है indradhanushair@gmail.com। तो जल्द से जल्द हमें प्रश्नों के जवाब भेजिए, हम आपको इंद्रधनुष की अगली कड़ी में प्रश्नों के जवाब और विजेताओं के नाम बताएंगे। इसी के साथ आज का क्रम इंद्रधनुष बस यहीं तक।

दोस्तों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नंदिनी श्रीकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं फिल्म क्वीन से खूबसूरत सा गीत। गीतकार है अनिविता दत्त, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

चलिए दोस्तों अगला गीत सुनते हैं फिल्म यस बॉस से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में। गीत दिया है जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

दोस्तों, इसी गाने के साथ युवाणी का आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। ख्वाबों को उड़ान देते रहिए, मंजिलों की ओर बढ़ते रहिए और अपने माता पिता को वक्त जरूर दीजिए। इसी संदेश के साथ मैं चंचला यादव आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।

0: युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की।
2: Both sides underscored the
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: of our shared future.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्र

0: स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतिव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है रिश्तों में समझदारी। संकलन एवं वाचन स्वर हैं कल्पना सिन्हा की।
2: रिश्ते हमारे जीवन की अनमोल पूंजी होते हैं। इंसान धन, सफलता और पूंजी तो अकेले हासिल कर सकता है, लेकिन सच्ची खुशी केवल अच्छे रिश्तों से मिलती है। रिश्तों की मजबूती केवल प्रेम से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य, सम्मान और विश्वास से बनी रहती है। जिस रिश्ते में समझदारी होती है, वहाँ छोटी छोटी परेशानियाँ भी बड़ी नहीं बन पाती। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि कई बार रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलत फहमियों से टूटने लगते हैं। एक कठोर शब्द, बिना सोचे कही गई बात या किसी की भावनाओं को नज़रअंदाज करना रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है। इसलिए समझदारी यह नहीं कि हम हर बात में जीत जाएं, बल्कि समझदारी यह है कि हम रिश्तों को जीतने दें। घर में माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहनों का संबंध हो या दोस्ती का रिश्ता हो, हर रिश्ते में एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, लेकिन हम उसकी परिस्थितियों और भावनाओं को समझने का प्रयास ही नहीं करते। रिश्तों की खूबसूरती मैं ही हूँ में नहीं है, बल्कि रिश्तों की खूबसूरती हम साथ साथ हैं में होती है। जब घर का कोई एक सदस्य गुस्से में हो, तब यदि दूसरा व्यक्ति भी उसी गुस्से में जवाब दे तो बात बढ़ जाती है, लेकिन यदि कोई एक शांत रहकर परिस्थिति को संभाल ले तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। यही समझदारी रिश्तों को टूटने से बचाती है। कभी कभी चुप रह जाना भी बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती है। रिश्तों में सबसे बड़ी आवश्यकता होती है सम्मान की। प्रेम कम हो जाए तो भी रिश्ता चल सकता है, लेकिन सम्मान खत्म हो जाए तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। किसी की बात ध्यान से सुनना, उसकी भावनाओं की कद्र करना, किसी को समय देना, ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को गहराई देती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे, जबकि रिश्तों को सबसे ज्यादा

0: जरूरत समय और अपनेपन की ही होती है। समझदारी का अर्थ यह भी है कि हम हर बात को दिल पर ना लें। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई जल्दी गुस्सा करता है, कोई कम बोलता है, कोई अपनी परेशानी व्यक्त नहीं कर पाता। यदि हम हर व्यवहार के पीछे छिपी भावना को समझने लगे तो शिकायत कम और अपनापन ज्यादा महसूस होगा। दैनिक जीवन में अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को करीब लाने के बजाय दूर कर दिया है। परिवार एक ही कमरे में बैठा होता है लेकिन बातचीत कम और मोबाइल पर ध्यान ज्यादा होता है। रिश्तों में समझदारी यह है कि हम तकनीक का उपयोग तो करें लेकिन अपने अपनों से संवाद बनाए रखें। कई बार अहंकार भी हमारे रिश्तों में दूरी पैदा करता है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए अपनों के साथ प्रेम और मधुरता बनाए रखना ही सबसे बड़ी सफलता है। एक पेड़ की तरह रिश्तों को भी समय समय पर देखभाल की जरूरत होती है। यदि उन्हें प्रेम, विश्वास और समझदारी का पानी मिलता रहे तो वे हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन यदि उपेक्षा और कटुता बढ़ जाए तो सबसे मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूटने लगता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि रिश्तों में समझदारी जीवन को सुंदर और सुखद बना देती है। दुनिया में सबसे बड़ी।
1: अभी आप सुन रहे थे कल्पना सिन्हा के स्वर में रिश्ते में समझदारी विषय पर विचार बिंदु। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार।
2: संघ धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 पूरा। प्रधानमंत्री है कहीं कि बिना गारंटी के कर्जा मिले ले लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में हो है सुधार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है आज राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के करें शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ल बढ़ावा दे बर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू। और प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज डारेगी वोट। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 पूरा हो गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये योजना के प्रशंसा करत कहीं कि पीएम स्वनिधि योजना है बिना गारंटी के कर्जा वित्तीय समावेशन और विकास के नवा मौका खोल के लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में सुधार करे है। प्रधानमंत्री है सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं कि यह योजना विश्वास सम्मान ऊपर आधारित है। 2020 में योजना के शुरू होए के बाद अब तक 1,12,00,000 कर्जा दे गए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव ले राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ करें। 1 तक चल रहा यह अभियान देश के खेती वाले भूइयां ला बचाए और किसान मन ला वैज्ञानिक खेती करे बर जागरूक करे के दिशा में बड़का पहल हरे। इति छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ला बढ़ावा दे बर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू हो गए है। कृषि मंत्रालय के ये अभियान में किसान मन ला प्राकृतिक खेती सही मात्रा में खातु के प्रयोग और माटी के उर्वरा शक्ति ला बचाए के बारे में जागरूक करे जाही। ग्राम पंचायत विकास खंड और जिला स्तर में कृषक संगोष्ठी कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम रखे जाही। कृषि वैज्ञानिक मन हा किसान मन ला रासायनिक खातु के दुष्प्रभाव और प्राकृतिक खेती के फायदा के बारे में जानबा दही। अभियान के दौरान किसान मन ला अपन खेती वाले भूइया के एक हिस्सा में प्राकृतिक खेती करे के बात कहे जाही। संगे संग खातु के कालाबाजारी और जमाखोरी रोके बर निगरानी व्यवस्था ला और मजबूत करे जाही। प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव पर आज मतदान डारेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरीय निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 ठीन पद पर 96 मतदान केंद्र में मतदाता मन वोट डारिन। तो उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत मन में जनपद पंचायत सदस्य सरपंच और पंच के कुल 151 पद पर 274 मतदान केंद्र में 1,00,000 ले ज्यादा मतदाता मन अपन मत के प्रयोग करीन। नगरी निकाय में मतदान बिहनिया 8 ले संझा 5 तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आएगी। तो उन्हें पंचायत चुने में मतदान बिहनिया 7 ले

0: मंझनिया 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम ले होइस। पंचायत चुनाव के मतगणना मतदान के तुरते बाद शुरू हो गई है। राज्यपाल रमेन डेका हा आज लोकभवन में राखे गए एक ठीन विशेष कार्यक्रम में माना स्थित SOS बालिका गृह के नोनी मन ले गोट बात करें। संगे संग ओमन अंगदान और देहदान के संकल्प लेवैया, मानवता के सेवा के संदेश देवैया 75 जिन लोगन मल्ला सम्मानित करें। ये मौका में राज्यपाल हा कहिन कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाए ले कतकोन जरूरतमंद लोगन मल्ला नवा जिंदगी मिल सकते। ओमन कहिन कि जौन लोगन मन अंगदान और देहदान के संकल्प ले हैं ओमन समाज के बड़का नायक हरे। राज्यपाल हा नोनी मल्ला शिक्षा अनुशासन आत्मविश्वास और कड़ा मेहनत करे के बारे में कहिन। विश्व तंबाकू दिवस के मौका में प्रदेश भर में नशा मुक्ति और जन जागरूकता अभियान चला के लोगन मल्ला तंबाकू और आने नशीला पदार्थ के दुष्प्रभाव के जागरूक करेगी। ही कड़ी में सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डहार ले जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मन में जागरूकता कार्यक्रम संगोष्ठी और जनसंवाद राखे गे लोगन मल्ला नशा के गलत दुष्प्रभाव के जान बदेगी। थाना मन में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स मन डहार ले कतकोन जगह में लोगन मल्ला तंबाकू सेवन ले होवैया बीमारी के बारे में बताएगी। ये मौका में गांव के लोगन मन के संगे संग युवा मल्ला नशा मुक्त समाज बनाए के शपथ दिवाएगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार को थी। होटल रेस्टोरेंट और आने व्यवसाय मन में प्रयोग होवैया 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर के भाव में बढ़ोतरी करेगे है। राजधानी रायपुर में वाणिज्यिक LPG सिलेंडर के भाव में 52 रुपया के बढ़ोतरी हो है तो उन्हें 5 किलोग्राम सिलेंडर के भाव में 13.50 रुपया की बढ़ोतरी हो है। मुख्यमंत्री आज कोंडागांव जिला के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में बने अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के निरीक्षण करें। ए दौरान ओमन ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु के कामकाज लघलो देखिन। सुशासन तिहार में राखे गए जन समस्या निवारण शिविर में आम लोगन मल्ले गलत व्यवहार और अपन काम में लापरवाही बरते के आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पांडेल निलंबित कर दिए गए है। संभागायुक्त दुर्ग डहार ले जारी निलंबन आदेश में कहे गए है कि जन समस्या निवारण शिविर में ए अधिकारी मन डहार ले आम लोगन मन के संग गलत व्यवहार करेगी जौन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के विपरीत हरे। ए बारे में संभागायुक्त दुर्ग डहार ले मुख्य कार्यपालन अधिकारी ल कारण बताओ नोटिस घलो जारी करेगी रहीस फिर ओमन एखर बने ढंग ले जवाब नहीं दे पाइन ये आदेश तुरते प्रभाव ले लागू हो गए है। लोक निर्माण विभाग मार्च 2026 तक मंजूर करेगे जम्मो काम पर 30 जून तक निविदा मंगाए है और 31 जुलाई तक काम शुरू करे के निर्देश दे है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल आज जम्मू मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता मन के बैठक लेके विभागीय कामकाज के समीक्षा करें। ओमन नक्सल प्रभावित क्षेत्र मन में सड़क संपर्क परियोजना ला अवैया बछर के 31 मार्च तक पूरा करे और संगे संग भू अर्जन ले जुड़े मामला ला अवैया 6 महीना में निपटारा करे बर कहिन। तहे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा नवा रायपुर में विभागीय कामकाज के समीक्षा करें। बैठक में ओमन कहिन कि आम लोगन मल्ला विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरा जानबा देना शासन के पहली प्राथमिकता है। ओमन 1 जुलाई ले लागू होवैया ए अधिनियम के बारे में पूरा जानबा समाज के आखिरी मनखे तक पहुंचाए बर विशेष जागरूकता अभियान चलाए के बात कहिन। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में हुए सड़क दुर्घटना में भिलाई के चंद्राकर परिवार के संगे संग 8 जिन लोगन के मौत हो गए। ये घटना साच पास रद्दा ऊपर हुई जहां पर्यटक मल्ले भरे एक ठीन कार करीबन 500 मीटर गहरा खाई में गिर गए। मृतक में भिलाई के एक दंपत्ति और 2 जिन लड़का घलो शामिल है। ये परिवार मन बेंगलुरु में राहत रहिन। जानबा के मुताबिक 2 परिवार डलहौजी ले साच पास घूमे पर गए रहिन। गाड़ी के वापिस नई लहूटे के जानबा मिले के बाद GPS के माध्यम ले एकर पता लगाया गिस। हादसा के कारण के जाँच करे जाते। जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाया जात ऑपरेशन अंकुश।

0: के तहत रायगढ़ पुलिस आईपीएल फाइनल मुकाबला के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलावत एक ठिन संगठित गिरोह के पर्दाफाश करके दू झिन सटोरी मन ल गिरफ्तार करे हे। आरोपी मन के तीर ले मोबाइल फोन, नोट गिने के मशीन और सट्टा के रकम ले जुड़े 31,99,000 रुपया नकदी बरामद करे गए हे। अब थोरकुन समाचार सार म। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज लोरमी के गांव जरहापारा में जन चौपाल लगा के गांव के लोगन मन ले गोट बात करके जरहापारा में देवगुड़ी बनाए बर 5 लाख रुपया दे के घोषणा करीन। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम धमतरी जिला में पुलिस की पाठशाला के लोकार्पण करीन। एम आने आने प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी ले जुड़े किताब मन ला मुफत में दे जाही। और रायगढ़ जिला के मांड नदी में हाथी के सावा के नदियां में डूबे ले मौत हो गए। ये घटना खरसिया रेंज के गुर्दा गांव के तीर हुई। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आज 6 बछर पूरा। प्रधानमंत्री है कहीन कि बिना गारंटी के कर्जा मिले ले लाखों रेहड़ी पटरी वाले मन के जिंदगी में हो है सुधार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के करीब शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में घलो प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण ला बढ़ावा देबर आज ले खेत बचाओ अभियान शुरू। और प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनई बर आज डारेगी वोट। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम वीब और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुधुली। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुधुली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रामलल्लू पांडे और साथियों की आवाजों में इस भोजपुरी लोकगीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम गोधूली आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए मोहरदास और साथियों की आवाजों में ये भिनसरिया गीत।

श्रोताओ, इस भिनसरिया कर्मागीत के साथ कार्यक्रम गोधूली आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पलक मुश्यल की गाई इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है MS धोनी। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं अमाल मलिक।

कार्यक्रम माधुरी में सुनिए अब सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में फिल्म फना का ये गीत। गीतकार हैं प्रसून जोशी और संगीतकार हैं जतिन ललित।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजों में फिल्म फना का ये गीत। कार्यक्रम माधुरी में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म एक विलन का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद इरफान की आवाज़ में फिल्म एक विलन का ये गीत। गीतकार और संगीतकार थे मिथुन। इसी गीत के साथ कार्यक्रम माधुरी आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के

0: आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज हुआ मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रुपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में 13.5 रुपये की वृद्धि की गई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 71 पदों के लिए 96 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के कुल 151 पदों के लिए 274 मतदान केंद्रों पर 1,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराया गया, जबकि पंचायत चुनावों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतपेटी के माध्यम से हुआ। पंचायत चुनाव की मतगणना मतदान के बाद संबंधित केंद्रों पर ही चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से खेतों में संतुलित खाद प्रयोग करने की अपील की।
1: हमको किसान भाई बहनों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नंगा धुंध खाद मत डालो, अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाओ और उसके बाद कौन से खाद की कितनी जरूरत है, संतुलित खाद डालो। उसे को खेती बदलनी है मतलब ऐसी करनी है कि जिसमें किसान को ज्यादा आमदनी हो और ज्यादा फसल पैदा हो और खर्चा घटे। ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए।
0: इधर छत्तीसगढ़ में भी प्राकृतिक खेती और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से खेत बचाओ अभियान शुरू हो गया है। कृषि मंत्रालय के इस अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और मृदा संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। ग्राम पंचायत, विकास खंड और जिला स्तर पर कृषक संगोष्ठी, कृषि चौपाल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव तथा प्राकृतिक खेती के लाभों की जानकारी देंगे। अभियान के दौरान किसानों को अपनी कृषि भूमि एक हिस्से में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं। होटल, रेस्तराओं और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देशभर में वृद्धि की गई है। राजधानी रायपुर में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब यह सिलेंडर 3,346.50 रुपये में मिलेगा। वहीं 5 किलोग्राम के सिलेंडर के दामों में 13.50 रुपये की वृद्धि हुई है। अब यह सिलेंडर 882.50 रुपये में उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कोंडागांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान भारतम अभियान के तहत संरक्षित लगभग 150 वर्ष पुरानी उड़िया भाषा में लिखित प्राचीन पांडुलिपियों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इन पांडुलिपियों को सहेज कर रखने वाले परिवारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज की भागीदारी के बिना सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान भारत की बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण डिजिटल सुशासन के अभिनव मॉडल सेवा सेतु की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोक भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में माना स्थित SOS बालिका गृह की बालिकाओं से संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने अंगदान और देहदान का संकल्प लेकर मानवता की सेवा का संदेश देने वाले 75 नागरिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ने से कई

0: जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोक निर्माण विभाग ने मार्च 2026 तक स्वीकृत सभी कार्यों के लिए 30 जून तक निविदाएं आमंत्रित करने और 31 जुलाई तक कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजनाओं को अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा करने तथा भू अर्जन से जुड़े मामलों का आगामी 3 से 6 माह में निराकरण करने को कहा। वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने नवा रायपुर में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को विकसित भारत अधिनियम के बारे में पूरी जानकारी देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने 1 जुलाई से लागू होने वाले इस नए अधिनियम के प्रावधानों और नियमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने को कहा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में नशा मुक्ति और जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। इसी कड़ी में सूरजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जनसंवाद आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। थानों में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा विभिन्न स्थानों पर लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को नशामुक्त समाज निर्माण की शपथ भी दिलाई गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए एक सड़क हादसे में भिलाई के चंद्राकर परिवार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा साच पास मार्ग पर हुआ, जहां पर्यटकों से भरी एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई के एक दंपत्ति और उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये परिवार बेंगलुरु में रह रहा था। जुआ और सट्टा के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत रायगढ़ पुलिस ने IPL फाइनल मुकाबले के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, नोट गिनने की मशीन तथा सट्टे की रकम से जुड़े 31,99,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुकमा, बीजापुर, बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों के साथ ही महासमुंद, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा सहित प्रदेश के 18 जिलों में तेज हवा के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके चलते इन स्थानों में तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने धमतरी जिले में पुलिस की पाठशाला का लोकार्पण किया। पुलिस की पाठशाला में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ी किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। सुशासन तिहार के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में आम जनता से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में मांड नदी में डूबने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। ये घटना खरसिया रेंज के अंतर्गत मांड नदी के गुर्दा गांव के पास की है। और कांकेर जिले की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 33 लाख रुपए कीमत का चोरी का सामान और वाहन बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपनिर्वाचन के लिए आज हुआ मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 52 रुपये और 5 किलोग्राम के सिलेंडर में 13.5 रुपये की वृद्धि की गई। और मौसम विभाग ने प्रदेश के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना

भावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों से। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:20 पर लगेगी ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश।

श्रोताओं, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि 9:30 पर हम आपके लिए लाएंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, जिसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन। रात्रि 10:30 पर हम आपके लिए लाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको अवगत करा दें हमारे कल के कार्यक्रमों से।

कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम विचार बिंदु का प्रसारण होगा प्रातः 6:30 पर। रामचरितमानस का गायन आप सुनेंगे प्रातः 6:35 पर। खेती की बात जिसमें आप सुनेंगे मशरूम उत्पादन पर सामयिक सुझाव आप सुन सकेंगे प्रातः 6:45 पर। कार्यक्रम गूंजे जंगल हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:00। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। कार्यक्रम मोर भुइया छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से जिसे हम रिले करेंगे प्रातः 8:30 पर। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन लेकर हम आएंगे सुबह के 9:00। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आप सुन सकेंगे प्रातः 10:00 जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह के 11:05 पर। NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा दोपहर के ठीक 12:00। कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे 12:30 पर। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन के 1:10 पर, जिसमें आप सुनेंगे कुछ बातचीत और आईना क्रम। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन के 1:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ आरंभ होगी हमारी सांध्यकालीन सभा 5:00। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 5:30 पर।

कार्यक्रम गोधूली आप सुनेंगे शाम 6:20 पर, और सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा होगा शाम 7:05 पर। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, साथ ही कार्यक्रम किसानवाणी जिसमें आप सुनेंगे हेलो किसानवाणी सजीव कार्यक्रम, ये आप सुनेंगे कल शाम 7:30 पर। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलत अजीज की गाई इस गजल के साथ। शायर हैं आनंद बख्शी।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए तलत अजीज की आवाज में ये गजल।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो चुके हैं। नीचे प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया हमार जम्मो किसान भाई उनकर घर कर लोग उनकर संगता गुट्टा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और धर्मो भैया कर राम राम। आज सोमवार रोज हवे, पहला तारीख हवे और पहले हमने छोटे छोटे रहें तो गाना सुनत रहें कि खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। और एक तारीख कर पहल शुरुआत चौपाल में और मन से मुलाकात बड़ा बढ़िया लागत है। और जानत है कि मैं आए हूँ तो गीत संगीत तो होबेच करी और संगे संगे मुलाकात करवाऊँ किसान भाई से, राजेंद्र क्रिकेटा जी से, ग्राम लिब्रा कर रोहिया और कैसे कैसे गर्मी वाला धान लगाए के लाभ लेता है, ओकर अलावा आने आने चीज़ भी लगाई हैं, मोर कोट बात है वाला सुनबो और संगे संगे मंडी भाव मौसम कर जानकारी और आखिरी में सवाल पूछल जाही और जिनकर सही जवाब आई से उनका नावला मैं अपन कार्यक्रम में जरूर लेहूँ। देखिए हमन कार्यक्रम का शुरुआत में कोनो ना कोनो विषय पे गोट बात कर थी। आज कर जो हमार गोट बात कर विषय हवे कि प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती जैसे कि नावे से लगेल कि भाई हाँ प्रकृति आधारित खेती जो पहले कर खेती रही जब हमार पुरखा मन खेती करत रही ना, वो घनी कहीं जात तो उतना विकास नहीं हो रही। वही जो अभी कर जो जैसे देखा थी ना लघु धान ने जिला हमन कथी जो वापस हमार थरिया में आएगी से जिला गरीब मन से कर भोजन कहत रही ना कोदो कुटकी सामा रागी, तो एमन जो है पहले हमार पुरखा मन खात रही ना। और जब हमार उतना विकास नहीं रही कहीं जात कर जैसे चिकित्सा कर नहीं

इस अस्पताल में उतना नहीं रहें और प्राकृतिक रूप से चिकित्सा भी होए, मतलब इलाज होए, तो वो घनी देखब कि हमर पुरखा मन कैसे जियत रहे, 80-90-100 बच्चर आराम से जिए, कोई बड़ बीमारी जैसे आजकल जो बीमारी हवे ना डेंगू फेंगू और शुगर उगर, ये सब पहले कभो नहीं रहीस। ओकर कारण यही रहीस कि शुद्ध जो है चीज खात रहिन और जांगर ला बढ़िया चलात रहिन, तो वही हवे हमर अभी प्राकृतिक खेती वापस लौटी से। जब मनसे कर जब कथे ना कि आवश्यकता हर जो है आविष्कार कर जननी रहल, तो आवश्यकता जब हमल जरूरत जब पड़त है ना, हमर जब देखत हैं कि रासायनिक खाद ला डालत हैं, कीड़ुआ कीटनाशक ला डालत हैं, एकर से का है कि एक तो का है शुरू शुरू में उपज मिलीस बढ़िया, लेकिन बाद में धीरे धीरे माटी कर उपजाऊपन हर कम होत गईस, तो एकर में जान गेन की नुकसान है और जो है शुद्धता नहीं रहल। कीटनाशक कर जो बात हवे, जब हम रासायनिक कीटनाशक डालती कभो कभो हमर किसान भाई ये गलती करते हैं कि ओकर में का है ओकर असर कितना हवे फसल में, एकर ध्यान जो अगर नहीं दे हैं तो का होल कि कभो कभो जो कीटनाशक का प्रभाव हर रहबिच करेल और जो है हमन बाजारे जिसे ले आंथी तो ओला जो है हमार स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेल, नुकसान होल। तो कभी भी अगर कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो ये बात कर ध्यान रखें। वैसे तो कीटनाशक कर सावधानी बहुत है, बाकी मैं उतना गोठियाए लगूँ तो ढेरे कह कि समय हर चले जाही। हमार बात होता है प्राकृतिक खेती कर, ऐसा खेती कि जेकर में कहीं पैसा ढूबिया ढेबुआ नहीं लगे, हमार जो हमार पास साधन रहे ओकरे पे आधारित एक खेती हवे, एकर में कहीं रासायनिक खाद नहीं डालना है, कहीं रासायनिक कीटनाशक नहीं डालना है, बिल्कुल हमला शुद्ध तरीका कर खेती करना है, जैसे देसी गाय कर गोबर गौमूत्र और हमार पास जो भी उपलब्ध साधन है ओकर अनुसार ही हमला खेती करना है। एकर से का है कि एकदम कहब कि बिल्कुल नहीं कर मात्रा में पैसा ढिबुआ लागेल, जो हमर खेती रहे ओकर लागत से कम कहब कि आधा से भी ज़्यादा 30-40-50% तक जो है ना कम लागेल। तो पहला तो फायदा हो इसकी कम लागत और ज़्यादा फायदा इमें मिलेल। अब देखी कि कम लागत इमें कैसे लागेल, एक तो है कि जीवामृत, एक आ है कि माटी कर जो उपजाऊपन है ये बढ़ाए वाला एक कहब कहली कि टॉनिक कहली है, जिला हम अपने यहाँ बना थी और का है कि ये जैसे गुड़ हो गईस और बेसन हो गईस एकर जो है मिराए के लिए हमन तैयार करती। और फिर का है कि जैसे कि बीज ला हमन सबसे पहले का है हमारे वैज्ञानिक भी अनुशंसा करते हैं ना कि बीज ला सबसे पहले लगाना है तो बीजोपचार करना है, यानी ओला उपचारित करना है, तो एला का है ये बीजामृत हमन जो बना थी एला बीज ला एकर से उपचार करल जाए और जो है कि फसल का जो शुरुआती बीमारी और फंगस से बचाएल। हमन एक बात जानती कि बीजा में का है कि रोग राई मन लुकाए रहते हैं, तो जब तक हमन बीजोपचार जब हमन करती ना तो ओकर जो है वो छुटकारा मिलेल। और कोनो भी चीज़ कर शुरुआत कहते ना न्यू हर अगर बढ़िया रहल तो बढ़िया इमारत खड़ा हल, शुरुआती अगर फसल कर तिहा हमन करती बीजोपचार कर लेती बढ़िया उन्नत किस्म कर बीजा लेती और शुरुआती जब उगेल ना तो हमें पता चल जाए कि थरा गनी कि ये हर बढ़िया सुघर जो है खेती हो ही। ओकर अलावा कहब निमास्त्र दशपर्णी अर्क ये जो का होल कि नीम कर पताई और दूसर आने आने प्राकृतिक चीज़ से एला बनाल जाए और यह जो है कीटनाशक हवे, तो का है कि एकर से फसल के कीट से सुरक्षा होल। तो प्रोरेमन जान गए प्राकृतिक खेती कर लाभ का हवे, लागत में कमी होल, बाजार में कहे ना महंगा महंगा रासायनिक दवा मन मिलते हैं भाई, केमिकल और कीटनाशक खरीदे कर हमला जरूरत नहीं हवे। और एक बात मैं कहें कि माटी कर जो उपजाऊपन है जो कि रासायनिक खाद डालते डालते और उत्पादन ज़्यादा लेह के चक्कर में हमन कर जो है माटी कर उपजाऊपन धीरे धीरे जो कम होता है ओला जो है यह सुधार करेल, जो हमार माटी कर उपजाऊपन है उर्वरा शक्ति जिला हमन कथी और जल धारण क्षमता और कार्बनिक पदार्थ में भी वृद्धि होल।
तो देखिए प्राकृतिक खेती कितना बढ़िया हवे। और एक बात आऊ हवे कि एकर से जो भी फसल उत्पादन होई वो उत्पाद कर कीमत जो है हमला ज़्यादा भेटा ही, काबर कि जैविक और रसायन मुक्त रही और ये जो है एकदम शुद्ध रही। अभी

तो का है कि हमन ला शुद्ध चीज जो है ओकर चिन्हार भी नहीं हो कि कैसे करिए ला शुद्ध हो ही कि नहीं हो ही का जानी कौन कौन समय कीटनाशक डाले रहें कि कैसे हो बाकी का है कि मन से खात हैं भाई जो चीज़ हर लोभलोभान दिखेल तो ला हाँ लेके आ जाते हैं बस हमन ये देखते कि कहीं कन्हा कन्हा टेढ़गा पोचका नहीं है तो साग सब्जी वाला भी हमन ले आते बाकी का है कि प्राकृतिक खेती से जो है ना शुद्धता जो है बिल्कुल बने रही। देखिए गोट बात तो पूरा कार्यक्रम में होते चल रही मैं तो कहता हूँ कि अब शुरुआतें में मनोरंजन हो जाए छत्तीसगढ़ी गीत हवे गाता है ममता चंद्राकर उनकर संगता हरे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ भाई, देखिए ये संदेश ला सुनें और एक पहले बड़ा शुरू सुघर अकन गीत सुनें, मात गए सरसों के फूल। गीत संगीत तो देखिए ना कि कहा है कि थकल बिदाल जब सांझ घनी जा रही थी। अभी तो घामों इतना है कि तो चटी अकन आदमी जब बाहर निकले तो लगे कि का कस जरता है, आँख कान सब जर जाता है। तो इतना थकान में जब हमन सांझ घरी घरे पहुँचती तो गीत संगीत जो है हमार जीवला हलुक करल, बढ़िया लागल। तो देखिए आज एक बताऊ हवे, विश्व दुग्ध दिवस हवे। मतलब संपूर्ण राउर मंत्र जानती कि हमर दूध जो है वे ये संपूर्ण आहार कहल जाए और हमर स्वास्थ्य, शरीर का विकास और पोषण का मुख्य आधार हवे। तो अभी हमन आज विश्व दुग्ध दिवस मना थी, 1 जून हवे और इला हर साल मनाल जाए। देखिए दूध लहमन सुपर फूड कहल जाए, का है कि ये बच्चा से लेके नान बड़ लड़का से लेके बड़खा सियान मन पर भी बहुत जरूरी है। ओकर कारण है कि एकर में कैल्शियम रहल जो मजबूत हड्डी ला करेल। दूध हमार कैल्शियम कर सबसे बड़ा कहमना प्राकृतिक स्रोत है जो हड्डी कर संगे संगे दांत ला भी मजबूत बनाएल। फिर ओकर अलावा कहब कि प्रोटीन हवे, मांसपेशी कर विकास होल। इमें एक उच्च गुणवत्ता वाला जो कथी ना क्वालिटी वाला प्रोटीन जो है जिसमें मट्ठा और कैसिन रहल, ये हमार शारीरिक विकास और मांसपेशी पर जरूरी हवे। ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोग ला घटाए कर, इमें विटामिन B12 जला B12 कथी, फास्फोरस और विटामिन डी होल दूध में, जो हमार शरीर पर जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद हवे। तो देखिए आज विश्व दुग्ध दिवस हवे और हमेशा देखब हमन एक बात कर मैं ध्यान करूँ कि हमन ला देखिए गाय हो गई, भैंस हो गई, सुकर से दूध हमन ला भेटाएल। बाकी एक बात हमर किसान भाई मन कोनो कोनो गलती करते हैं कि जो गाय हो गई, बैला हो गई, भैंसा हो गई, सो मतलब उड़ियार छोड़ते हैं। तो उड़ियार झीन छोड़ी ककरो भी काहे कि खेतवाही मन ला नुकसान जो है पहुँचा देते हैं, ककरो फसल ला खा देते हैं। तो ध्यान करी कभी भी जिसे जो चराए जाते हैं उमल चराए पर भेजी, और अभी खासकर गर्मी कर समय उनकर स्वास्थ्य कर बहुत ध्यान करना हवे। जो भी कोठार हवे उनकर में इतना सुविधा होना चाहिए कि कम से कम हवा कर जो है आवागमन भी रहे और संगे संगे छाया कर भी प्रबंध रहे, और जो उनकर पिए कर जो पानी रखत ही ना हो, पानी हर जो है बढ़िया साफ रहे, और कहे समय समय पर टब जो है जिसमें नाद में पानी रखती ना उकर सफाई भी होत रहे और पानी जो है कटिक ठंडा रहे। पशु मल्ला जो है पानी कर कमी झीन हो दी, हमेशा जो है पानी भरे रहे। अब देखब कि हमर जो है ये आज जो विश्व दुग्ध दिवस जो हम मना थी, तो हमला का है कि जागरूकता भी फैलाना हमन ला चाहिए। स्वास्थ्य और पोषण जो है ना, हमन आम जो व्यक्ति मन हमें हमारे मन से मन हमें उमन जो है दैनिक आहार में दूध और डेयरी उत्पाद कर का स्वास्थ्य लाभ है एक बारे में हमला बताना चाहिए। और जो है कोई भी डेयरी उद्योग

अगर करता है तो उमन ला जो है हमन ला सहायता करना चाहिए, उनके सम्मान देना चाहिए, कहे कि बहुत बड़ा योगदान उमन करता है हमार समाज पर, हमार जो है कहब जांगर पर। छोटा बच्चा मन रहते हैं एकदम नान बच्चा में, शुरू से कहब कि पोषण जो है ना हमार दूध के द्वारा जो है बहुत हमन ला पोषण भेटाएल, जिसमें बताए ना कैल्शियम फास्फोरस प्रोटीन विटामिन ए डी बी 12, तो ये जो है हमला भेटायल। वैश्विक मान्यता भी हवे कहब, एक विश्व दुग्ध जो मिशन हवे ना दिवस कर, एक कहब कि उद्देश्य हवे कि दूध ला एक सुलभ और पौष्टिक खाद्य पदार्थ के रूप में बढ़ावा देना हवे, जागरूकता हमला फैलाना है कि लोग नियमित रूप से दूध कर सेवन करें, ये बात ला हमला बताना चाहिए। और देखिए जो दूध कर फायदा जानते हैं वन तो सेवन करते ही, और ज़्यादा से ज़्यादा हमला दूध देखिए कि पिए के कुछ खास कायदा हवे, जैसे अगर रात में जैसे पिए थी ना, तो आयुर्वेद के अनुसार जो है रात में सोए से पहले हल्का गर्म दूध जो है ना पीना पाचन और बढ़िया नींद पर अच्छा मानल जाए। और उसने कहा कि दिन कर शुरुआत जैसे सुबह सुबह हम शुरुआत करे थी नाश्ता के समय दूध पिए थी, तो दिन भर कहब कि अच्छा बढ़िया कहब हमला बढ़िया लागे, ऊर्जा मिले एकर से। एकर अलावा कहब कि देखब ना अगर कोयला सादा दूध नहीं पचत है ना, तो एकर जो है दही या कहली मुठ्ठा या पनीर के रूप में भी हम दूध कर सेवन कर सकत ही। गुड बात और कार्यक्रम में होते च रही, देखो देखब किसान भाई से मुलाकात करे कर बेरा हुए चली से किसान भाई।

देखत ना, अगर कोयला सादा दूध नहीं पचत है ना, तो एकर जो है दही या कहली मुठ्ठा या पनीर के रूप में भी हमन दूध कर सेवन कर सकत ही। गोट बात और कार्यक्रम में होते च रही। देखो देखब किसान भाई से मुलाकात करे कर बेरा हो चली से। किसान भाई हमें राजेंद्र केरकेट्टा ग्राम लिब्राकर रहुया। तो सुनी का गोट बात हुई से मोरठन।

0: अभी ये दरिमा रोड में मैं जात रहे तो देखे कि एक ठन किसान भाई सब्जी बेचत है, आमा भी हवे और भिंडी हवे, करेला हवे, कहन की इनका से गोट बात करल जाए। लिब्रा में आते ना ये गांव? लिब्रा है,
1: लिब्रा में आते।
0: हाँ, ये गांव लिब्रा है, एक आगे दरिमा पढ़ी। किसान भाई बढ़िया लागत है, राउर का सब्जी मन ला देखे में बढ़िया लोभलुभान हवे, और इतना अभी गर्मी का समय रौरे जो है खीरा वगैरह बेचत थी, आ जाए वाला बनकर सहायते करत थी। का नाम है तुम?
1: राजेंद्र करकट्टा।
0: राजेंद्र भाई, तो ये सब तो तुम्हारे अपने खेत कर हवे?
1: अपन खेत के है, अपन खेत के है, खुद लगाए ही ला।
0: अजय का का लगी सोई?
1: अभी बरबटी निकलत है, बरबटी, भिंडी, करेला।
0: अच्छा,
1: अभी खाली बरबटी और भिंडी निकलत है अधिकांश मात्रा में, लौकी है थोड़ा सा।
0: अच्छा, मतलब साल भर खेती लेती?
1: हाँ, तो अब साले भर खेती करते, अभी आई तो फिर धान, अभी जेठी वाला धान लगे है कुछ में।
0: अच्छा, गर्मी वाला धान लगाए ही?
1: हाँ, गर्मी वाला धान लगाए ही।
0: कितना खेती है तो राउर कर?
1: 5 एकड़ लगभग है।
0: अच्छा, और सब में साल भर खेती करती?
1: हाँ हाँ, साल भर खेती हो जाए, पूरा पूरा में लगाते, कुछ ना कुछ लगे रहते पूरा खेत में।
0: अच्छा, हाँ। तो सिंचाई का साधन?
1: सिंचाई के साधन अभी नहर है, नहर से हो जाते बरसात के समय में, जैसे अभी भी गर्मी समय में। अच्छा। नहर में पानी देते तो वहाँ से सिंचाई करते।
0: हाँ।
1: और घर के पास में बोर करल है।
0: अच्छा,
1: बोर से अपन करती सिंचाई।
0: ये जो गर्मी वाला धान लगाए ही, करीब करीब कितना में लगाए हो
1: धान ला?
0: हाँ?
1: करीब वही 3-4 एकड़ हुई।
0: अच्छा, तो
1: 4 एकड़ लगभग में है, 4 एकड़।
0: तो हर दफे गर्मी वाला लगाती रहो रे?
1: नहीं, अभी पिछले 2 साल से लगाती, तीसरा साल है धान लगाए थे, नहर में पानी नहीं देते तो नहीं लगाते।
0: अच्छा राजेंद्र भाई, मौके ये बताई कि जो हमन बरसात वाला धान लगाती और गर्मी वाला धान लगाती, तो उनमें फायदा कौन में ज्यादा होल?
1: फायदा देखिए तो दोनों में है, और लगाए के ऊपर में है। जैसे लगाए क्या है कि गर्मी वाला जो है थोड़ा सा ठोस निकलते है, और बरसात वाला जो है थोड़ा सा कुछ ज्यादा ओकर में खराब निकलते हैं। अगर ओकर में सही पौष्टिक अगर मिल जाते तो उनमें फायदा अच्छा है।
0: गर्मी कर वाला में तनी रोग राय कीड़ुआ मन नहीं लागे?
1: नहीं, बहुत कम, बहुत कम, नहीं के बराबर।
0: हाँ।
1: बस जो कुछ लगना वही तना क्षेत्र बस।
0: अच्छा,
1: एक ही रोग लगे लोकल में, और वही है खरपतवार।
0: हाँ,
1: वो जरूरी है दवाई गर्मी सीजन में।
0: अब मैं देखा था कि लगभग तो तैयार है छोएगी से।
1: हाँ,
0: तो कब कटाई हो?
1: अब थोड़ा सा खेत थोड़ा सूख जाए।
0: अच्छा,
1: सूखे के नमी है तो एक वजह से, और कुछ जगह हो गई से ऊपर में है तो सूख गई से, तो बन जल काटे खाते तभी थोड़ा थोड़ा मतलब एक आध सप्ताह में काटा ही।
0: राजेंद्र भाई, रोरे से गोट बात करके बहुत बढ़िया लागत है। ये बताइए कितना परिवार होता तो रोरे में?
1: नहीं, अभी ज्यादा परिवार नहीं, 5 परिवार है।
0: 5 में मतलब एगो तो राउर मन दूठन हो गए,
1: बच्चा मन है 3 जन, तो बहू है,
0: बहू तो 6 जन हो गए।
1: 6 जन हो गए
0: तो बहू कर मतलब अभी अभी ब्याह करे ही, मतलब लड़का कर?
1: हाँ, लड़का के भी करे ही, 3 साल हो गए।
0: 3 साल है, लड़का छुआ नहीं हमें?
1: अभी नतनी है।
0: अरे तो हूला तो जोड़ना है। बहुत बढ़िया है राजेंद्र भाई, खेती पाती से बढ़िया खुशहाली है घरे?
1: हाँ ठीक है, चलो अपन जिंदगी
0: है ना। तो लड़का मन पढ़ी लिखी की नहीं?
1: पढ़ी नहीं, सब पढ़ते हैं।
0: अच्छा,
1: पढ़ाई करते हैं।
0: तो बड़का है, कितना बड़े है? लड़का है कि लड़की?
1: बड़ा वो तो लड़की हो के ससुराल में देते हैं।
0: अच्छा,
1: ब्याह कर दे हैं।
0: दूसरा नंबर के लड़का हो?
1: दूसरा लड़का है, फिर छोटी वाली भी लड़की है।
0: लड़की तो? अच्छा, लड़की छह और पढ़त हो?
1: हाँ, पढ़त है।
0: अभी कौन क्लास?
1: वो एमए कर चुकी से।
0: अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया बात है। राजेंद्र करकट्टा जी कर गाँव बहुत बढ़िया है, वे अगल बगल पूरा हरियाली है, और जबकि ये गर्मी का मौसम है, उसके बाद भी बहुत बढ़िया हरियाली नजर आता है, मतलब

0: सब अगल बगल वाला बढ़िया शुगर खेती करते हैं।
1: पिछले साल से ज्यादा धान की खेती हुई है, पिछले साल भी इसी प्रकार से हो रही, तो पिछले साल से भी और ज्यादा खेती करेंगे धान के।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: धान के फसल बहुत ज्यादा लेने, ओकर में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है ना, गर्मी सीजन वाला में ज्यादा मेहनत नहीं लगता है।
0: अच्छा,
1: एक बार खाली बुवाई कर दे या फिर रोपा जैसे लगाना है तो रोपा लगा दें तो फुर्सत होगी। रोपा लगाए से ज्यादा फायदा है गर्मी वाला में, पूरा ठोस होकर फसल मिले।
0: अच्छा, जैसे जो बरसाती वाला कमाती अभी खरीफ आई ओला कमा तो करीब करीब कितना धान कमाती? तो
1: ओकर में देखे साल में पूरा खाए भर हो जाते हैं ना, और सोसाइटी में भी देती, हालांकि क्या है कि सोसाइटी में दे के बावजूद में बजल हमर
0: कुछ पतला धान अभी लगाती का।
1: हाँ, पतला धान खाने के लिए लगाते।
0: अच्छा, और जो सोसाइटी में भेटा ओला का करती?
1: सोसाइटी मिले तो ओला खाती, पतला धान खुद मतलब कुछ कुछ मात्रा में लगाते, पूरा में नहीं लगाते, एक आठे एपी में आधा एकड़ लगभग में लगा लेते पतला धान ला, तो ओला भाई हमेशा तो खाना है, परिवार खाना है।
0: किसान क्रेडिट कार्ड बनवाई ही का?
1: हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड सोसाइटी वाला चला था ना।
0: अच्छा,
1: समिति वाला?
0: हाँ हाँ
1: हाँ, वो वाला है, बैंक वगैरह का नहीं है। हाँ, धान जो जगह बिक्री करते वही वाला है मात्र।
0: अच्छा,
1: बैंक और दूसरे बैंक से नहीं बनवाए।
0: राजेंद्र भाई, मैं देखा था कि रोरे कर पूरा परिवार भी खुशहाल है, बढ़िया पढ़ लिख धारिन भी हैं और एक ठन तो पढ़ते छवे, और ये सब तो जितना कर कमाई खर्चा सब खेती से ना इस?
1: हाँ, खेती से, खेती से। अब बीच बीच में अभी तो छोड़ दें, कमजोर होगी शरीर तो मैं खुद कमाए जाते हैं मजदूरी करे।
0: अच्छा, खेती के अलावा भी मजदूरी
1: के अलावा? खेती के अलावा मतलब ऐसे समय में
0: हाँ
1: दो जाते हैं मजदूरी करे।
0: अब तो साल भर खेती करती तो समय भी नहीं मिलत हो?
1: हाँ, अब खेती में लग गए हैं तो नहीं मिले समय, कुछ व्यवस्था होते गई तो खेती करना चालू कर दें तब नहीं जाता हूँ फिर कमाए खाते।
0: बढ़िया बात है राजेंद्र जी की, रोरे जो है साल भर खेती करती, कहूँ कहूँ हमन देखती कि जमीन हर परिया पड़ा है तो हमला बड़ा खराब लगे कि भाई प्रकृति कर देहल जमीन खाली नहीं रहे, बढ़िया सुगर अकन खेती करें हमारे किसान भाई। तो जो किसान भाई राहुल कर गोट ला सुनत हैं बढ़िया सुगर अकन खेती करें, एक बार का कहना चाहे रोरे?
1: बढ़िया मेहनत करें तो बढ़िया फल मिली, ओकर बादे नहीं है। बढ़िया से ओला सही ढंग से देख रख रखाव करी, ओकर देखभाल भाल करी तो ओके मिली।
0: हाँ,
1: फल मिलवे करे,
0: फसल ज्यादा आ जाए तो भाव कम हो जाए। समय कर ऊपर खेती करी ताकि ना राउर कर फसल जो है पहले आए मंडी में या बाजार में तो बढ़िया भेटाई ओकर दाम।
1: नहीं, वो तो है बढ़िया भेटाई चीज, हम जाना थी अभी बरसाती टमाटर अभी लगाबो तो ओकर में मिली पैसा ला जाना थी हमें।
0: हाँ,
1: लेकिन ओकर व्यवस्था कर
0: तो व्यवस्था करना तो है जरूरी। हाँ, है
1: ओकर बिना मिल ही नहीं फायदा। अब एक बाद में लगा थी
0: रौरे ना, सिंचाई साधन जो है ना और ड्रिप सिंचाई कर कोशिश करी
1: भी मैं लगाए के कोशिश करूँ अभी।
0: हाँ, ऊपर से का है ना
1: ड्रिप सिस्टम में थोड़ा समय के भी बचत हो और समय पे सिंचाई भी हो।
0: हाँ,
1: फायदा बहुत कुछ है, जानकारी तो है, लेकिन भाई धीरे धीरे कोशिश करत है लगाए बर ओला व्यवस्था होते जाते हो अनुसार में।
0: राजेंद्र भाई रोरे से आज सुगर गोट बात हुई, रोरे के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, धन्यवाद।

हाँ तो देखिए हमार किसान भाई से बड़ा शुक्र कन खेती करत हैं राजेंद्र केरकेट्टा जी और उनकर से गुड बात करत रहन मैं तो देखी अच्छा भी लागत रही और एकदम कहब ना कि रोड कर धरी अच्छा दुकान लगा रहीन तीन चार पांच किस्म कर सब्जी मतलब बेचत रहन खुद कर उगाल खुद कर खेती करल बड़ा अच्छा लागल हमला जब हमार किसान भाई जो हैं फसल लेते हैं खरीफ में भी कहब रबी में भी जायद में भी तो परिया नहीं रहे और अपन आयला दुगुना तिगुना करते हैं और कितना जागरूक किसान है अभी ड्रिप नहीं लगाई है बाकी कहते हैं कि ड्रिप लगवाऊँ मैं जरूर से जरूर देखब अभी हाँ अब देखब एक तारीख है अब शुरुआत होगी से आज तो हमार कहब कि अंबिकापुर में कायल भी पानी गिरीस परो दिन भी पानी गिरीस अच्छा तेज कायल तो गिरे रहीस करीब एक घंटा नियर झोरो झीटो मैं तो बाजार कति गए रहें कहूँ कि पाँच बजे नियर एक घंटा अच्छा मारिस पानी मतलब अभी मानसून कर भाए अब शुरुआत होए वाला है हमार जो है किसान भाई खेत कर तैयारी अच्छा करीन हुई बढ़िया काहेबर की देखब कि गर्मी में जो बढ़िया जोताई कर रहे ना तो कर फायदा हमला भेटायल कि गर्मी में जो भी किड़वा मन रहते खेत

वही में ना, अगर बढ़िया जोते रह तो अच्छा गरम लागेल तो घाम में अच्छा भुरभुटाए के मर जाते हैं। ओकर अलावा कहब कि रोग राई कर भी संभावना बहुत कम रहल हो जाए अगर ग्रीष्मकालीन गहरी जोताई जिला हमन कथी हमर वैज्ञानिक आते हैं अनुशंसा करते हैं। मानसून आए के पहले कहते हैं कि करीब 10-20 दिन पहले खेत कर गहरा जोताई हमला करना चाहिए। माटी पलटे वाला हल से ओकर बाद हमला कहते हैं हले अपलाऊ से करना चाहिए पहला जुताई। फिर ओकर बाद कहब कि फायदा एकर से है कि जो माटी का निचला कठोर परत है वह टूट जाए और तेज धूप से जमीन के अंदर में बताएं हानिकारक जो किड़ुआ रहते हैं फंगस खरपतवार वो सब ऊपर आके जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर ओकर बाद हम लगा करना है माटी प्रबंधन करना है, जैविक खाद डालना है। क्या है कि जुताई के बाद माटी कर जो उपजाऊपन ला बढ़ाए बर ना जैविक खाद डालना जरूरी रहल। फिर गोबर कर खाद खेत में बढ़िया अच्छा तरह से सड़ल गोबर कर खाद या कंपोस्ट खाद जो है ला हमला फैलाए के जो है माटी में मिलाना चाहिए। अगर जैसे रौरमंजक संभव हो तो हरा खाद जो है मानसून से पहले ढेचा या सनाई कर फसल जो है हमला बुनना चाहिए और फूल आए पे ओला खेत में ही हमला जोत देना है ताकि माटी में नाइट्रोजन कर जो है कमी झीन रहे। जल निकासी कर जो है हमला प्रबंधन करना चाहिए, नाली बनाना चाहिए खेत कर किनारे और बीच में बढ़िया ढलान वाला जल निकास पानी कर निकास कर व्यवस्था होना चाहिए। ओकर अलावा भी हमला मेड़बंदी कर लेना चाहिए खेत कर मेड़ला मजबूत कर ऊँचा करें ताकि जो है बरखा कर पानी खेत के अंदर समान रूप से ठहरे और माटी कर कटाव झीन होए। देखिए ये सब बात कर जो है हमारे किसान भाई तो जानबे करते हैं कि करना चाहिए। बीज कर हमला उपचार और मृदा परीक्षण माटी कर जो है जांच कराना जरूरी रहल। मैं तो देखिए हमेशा अपन कार्यक्रम में याद दिलात रहता हूँ, वैज्ञानिक भी अनुशंसा करते हैं कि भाई माटी कर और मन जाँच कराए ली। माटी कर जाँच कराए से क्या है हमला पता चल जाए ना कि हमार माटी में कौन कौन सा पोषक तत्व तो बेसी हवे कौन कम हवे तो हिसाब कर जो फिर हमला खेती करब तो कभी घाटा नहीं हो ही। और एक अलावा एक ठन और चीज़ मैं ध्यान दिला दूँ और मतलब किसान क्रेडिट कार्ड वैसे तो कहूँ कि लगभग लगभग सभी झंझक रहल कुछ जो है किसान भाई नहीं बनवा पाए रहते हैं मतलब जरूर से जरूर बनवा लेना चाहिए भाई। बढ़िया सस्ता ऋण मिले लो में किसान जो है ओकर से कहब कि मजबूत होल काहे पैसा ढेबुआ जब हमला जैसे किसान मानधन योजना है जब हमला 3 किस्त में 2,000 रुपया जैसे भेटाएल ना तो जब हमला पैसा ढोबे को जरूरत रहे तो वो घनी बहुत हमला खेती में सहायता मिले लो। इसने हवे किसान क्रेडिट कार्ड जो है हमला सस्ता आसान रूप से जो है एकर से ऋण लोन मिल जाए और एक योजना कर हमारे उद्देश्य हवे कि किसान मनला साहूकार मन का कर्जा से मुक्ति दिलाना। सस्ता ब्याज हमला एकर से भेटाएल तो कहे कि किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ओकर अलावा बीमा सुविधा भी रहल जो भी कार्ड धार बनवाते हैं उमन कर बीमा भी होल और एकर में कहे पात्र कोई भी किसान बनवा सकते हैं वो जो खेती करते हैं। और ओकर अलावा कहा पशुपालक डेयरी वाला जो जिनका डेयरी व्यवसाय है या मछुआरा मछली व्यवसाय करते हैं उन भी ये ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा दस्तावेज कर नहीं है जरूरत, पहचान पत्र रहे निवास रहे और जमीन कर जनती खसरा बीमन कागज रहे और फोटो लगी और जो है बैंक द्वारा जो है कहल जाही आवेदन करा तो ओला आवेदन करना है। देखिए बेरा हो चली से मंडी भाव कर बताए कर तो आज कर हमार अंबिकापुर मंडी में गेहूँ रहीस 2,586 रुपया प्रति क्विंटल, बंगाल चना रहीस 6,000 रुपया प्रति क्विंटल, सरसों रहीस 6,000 रुपया प्रति क्विंटल, गन्ना कुसियार 360 रुपया प्रति क्विंटल और राम तिल 7,000 रुपया प्रति क्विंटल। मौसम कर जानकारी कर बात हवे तो तापमान कर बात करो तो आज कर अधिकतम तापमान रहीस 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहीस 25 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 26 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सवाल पूछे कर बेरा हुए चली से तो मैं जो 30 सुमारो हमन पूछे रहे सवाल कि केला पपीता फसल में तेज धूप से बचाव पर हमला का करना चाहिए तो देखिए कि सही जवाब जो लिख भेजी है चिट्ठी मोर हाथ में है ये नवापारा कला से भेजुन है ये सुभाष राम अर्जुन रामदेव मंगल
और

उनकर संगता हरे। इनके चिट्ठी लिखे बर धन्यवाद। एकर जवाब हवे कि खेत में नमी बनाए रखें, पौधा के आसपास सूखल घास फसल अवशेष बिछा कर ओला मल्चिंग करना चाहिए और तना के पास माटी चढ़ा के हमला रखना चाहिए। आज कर सवाल दौरे मन नोट करी, आज कर सवाल हवे कि प्राकृतिक खेती कर लाभ बताना हवे। तो देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, राउर मन कर चिट्ठी एक हफ्ता ले पहले मिल जाना चाहिए। जिनकर सही जवाब रही उनका नावला हमन अपन कार्यक्रम में जरूर से जरूर लेहब। अब जाति जवाती एक ठन सुघर कन गीत हो जाए, गात अहाँ केदार यादव उनकर संगता हरे।

0: हमरो पूछया भैया कौन रहेगा।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भाई, ये संदेश लावे सुनेन, एक पहले बड़ा सुगर अकन गीत सुनेन कि केदार यादव और उनका संग दाकर गाल रहीस। देखिए अब विदा लेकर बेरा होता है। जरूर एक बात कर ध्यान दिलाऊं किसान भाई मल्ला कि भाई देखें, अब मौसम कर जो है शुरुआत है किसे, मानसून तो अभी कटिक कह प्यासे पास हवे, बाकी का है कि घरा घाटा चलता है, कभी देखा अचानक से बरखा आ जाता है और धूप भी बहुत तेज है। तो ये समय हमन ला ध्यान करना है कि ये जो मौसम कर जहाँ बदलाव हो ना, वो घनी कहब कि बर बीमारी जो है ना रोग कर संभावना रहल, तो ध्यान करना है। लड़का छुआ मन कर ध्यान करना है, हमन ला सियान मन कर ध्यान करना है, और जो ये मौसम कर जो ये परिवर्तन है ला ध्यान रखते हुए जो है पानी खास कर जो है ना इला बढ़िया उबाल के पी और छान के उबाल के पीना चाहिए। मतलब उबालना सबसे बढ़िया इलाज हवे ताकि जो है रोग राई कर संभावना जो है, पेट कर जो बीमारी जो कर संभावना कम रहे और बढ़िया।

अभी ग्रामीण श्रोताएं सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में आज हमें फरमाइश भेजी है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सिखा और शेफाली ने। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम और मनोज यादव ने। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा ने। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई ने। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके और पोपो रानी ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। पल्लारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन ने। भक्कर पंजाब से मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक और अली रहमान ने। असम स्टेट से हितेंद्र दास ने और जसपुर उत्तराखंड से रियात हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, वन मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। पाटन गुजरात से धीरज वी रब्बारी और अकोट महाराष्ट्र से बालू पाटिल, सविता पाटिल, नितिन पाटिल और नलिनी पाटिल ने। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, मिशाल और चेतन मनवर, साथ ही रोशनी मनवर, प्रियांशी ने भी। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाकतरिया ने। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, एसके पप्पी ने। चनौर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में फिल्म बागी का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है।

सफ़ीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना ने, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी ने, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान ने, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवान ने और रावर करनाल से विनोद लखनपाल ने, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुकटुक ने, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सागर का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अगली फरमाइश की है। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने कटरा चांद खा मौर्य मंदिरवाड नंबर 11 पुरानी शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य ने रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव ने खोखरावली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और सगुन बारासा ने बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुढ़त, चेतन नाहटा ने चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू ने जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया ने हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी प्रिंस, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा ने चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यस मंसूरी ने वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली अरोड़ा और आरती अरोड़ा ने फाजिलका पंजाब से विशु खेड़ा, भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेला गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी और ऋतिक साथी बलवीर सिंह ने गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिर जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने कोल सिटी बरका काना से अफजालताज, साहिन, सुल्तान, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक ने बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी सविता माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा चुटकी, शरद कुमार डोंडवानी ने छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वानिया सिंगरौल ने आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म गदर एक प्रेम कथा का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और मैं आपके साथ हूं आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। हमारे श्रोता साथी हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, राजकमल रेडियो श्रोता आष्टी जिला जालाना मराठावाड़ा से सैयद यूनुस सैयद, नोमान तनवीर, मसरत सैयद, निज़ामुद्दीन राम भाऊ तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का।

0: सागुते ने पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुटी भगत ने, भागलपुर उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी ने, गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ा राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, लोकेंद्र वर्मा, अनिकेत वर्मा, अर्पिता वर्मा, रेखा वर्मा, इशिका वर्मा, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश कुमार और नियति कुमारी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, सादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से रविंद्र सिंह छाबड़ा ने, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया ने, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े ने, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने, टोरूवाला जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी ने, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजान कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीत, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोकोरानी ने, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, अनिष्का और तन्मय गजबिये ने, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने, बिट्टू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदूलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव और गेंदू भाई ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा और पूजा परिहार ने, मुजफ्फरपुर बिहार से राम कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी ने, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने, ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी ने, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया ने, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म हम का ये गीत, सुदेश वाडकर, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: चिक बम बम बम चिक चिक बम।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष ने। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद और सरजाल ने। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर ने। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान ने। ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने। उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा ने। अनारकली वज्रा जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी ने। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी ने। जिला नांदेड़ येताल महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। अंडार नांदगढ़ से माखन वर्मा और चांदनी वर्मा ने। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज़ में फिल्म नदिया के पार का ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। स्वामी जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज़ में फिल्म नदिया के पास।

नवापारा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ से मुनेश राम, सालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी और दीपांशु ने। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभित सिलोर जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के ने। मुंडाडोला डोंडीलोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल, कामेश और माहिर नेताम ने। ग्राम पंचायत सिरकुंद का महादेवपारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू, बल्लू, धनु, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकलराम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े और सिमरन राजवाड़े ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा। कुमार सानू और

राम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू, बल्लू, धनु, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकलराम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े और सिमरन राजवाड़े ने आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सरफरोश।

0: बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान गुजरात पश्चिमी मध्य प्रदेश ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक रक्षा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: Both sides underscored the
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
4: I am confident that this comprehensive agreement
5: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
4: Of our shared future.
1: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आज यहीं तक। अपनी फरमाइशों के गीत सुनने के लिए हमें सोशल मीडिया पर अपनी फरमाइशें भेजते रहें। मीडियम वेव और एफएम

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1 लाख

0: 92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही है वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है, किसान के हित में रही है। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक

0: लेते हैं।
1: द मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैज बिकम अ लाइफलाइन फॉर फार्मर्स एज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 265 मिलियन टन्स इन 2013-14 टू अराउंड 358 मिलियन टन्स इन 2024-25। इंडिया हैज आल्सो बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर सरपासिंग चाइना विद अ रिकॉर्ड।

0: That is all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म नागिन के इस गीत के साथ। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आप सुनिए फिल्म चिराग का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है मदन मोहन।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत के अंत में सुनिए तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं हजरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा।

मदरसे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

0: 他带上点的冰。
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो हम सफर जयमाला। तो चलिए कार्यक्रम का सफर शुरू करते हैं और आपके ईमेल जो हमें प्राप्त हुए हैं। पटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, उत्तम कुमार बंघेल, रुक्मणी बंघेल, साहिल, भारती बघेल, लंघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गल्लू लाल रजक, मुरली क्षत्रिय ने, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने, मानसी अनिल, गौरव, कविता अरोरा, गांधी मार्ग कीर्ति नगर नई दिल्ली से, जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, अनूपपुर मध्य प्रदेश से, ग्राम सिंधवा बाजारपारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से, धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा और नरेश सिंह ने, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया ने, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने, जिला खरगोन सनावन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप ने, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में। फिल्म है दिलवाले, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और सुनते हैं आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। परवणी महाराज से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई और प्रीतेश संगई की फरमाइश, साथ ही आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर मिट्ठीमुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई ने, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत, पुष्पांजलि वर्मा नवागढ़ कटई से, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति कुमार, ग्राम चरौदा, बार नवापारा, अभ्यारण जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवहाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवहाड़कर, प्रणीता, सिद्धांत गवहाड़कर, अर्जुन गवहाड़कर और टुकटुक ने, बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी, वणिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, जी के परमार, सेक्टर 2B, गांधीनगर गुजरात से, ग्राम पंचायत सिरकोनतंगा, महादेव पारा, पोस्ट लहपटरा, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, धनु, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकलराम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े और सिमरन राजवाड़े ने, आदर्श नगर मलोद पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मेंदे, सौरव और साइना शर्मा ने, ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा ने, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल, दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता वर्मा, साथ ही रुद्र वर्मा। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये गीत। गीतकार हैं महबूब और संगीतकार हैं इस्माइल दरबार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में आप सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म फूल और कांटे का ये गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडीलोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, ग्राम जखगांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन और अमीना पटेल ने। इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा ने। महेंद्र मोदी ठाकुर साहब रामगढ़ कैंट से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बाजार और बिट्ठा बजाज ने। संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, साजी नगर देंगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार, कृष्ण कुमार, सुनील कुमार, संजीव केवर, चित्रंजन यादव, मनीष कुमार साहू, तेज कुमार साहू, अंबिका प्रसाद केसरवानी, रविशंकर राजवाड़े, गंगेश्वरी भास्कर, कविता मांझी, सुभद्रा केवट, श्वेता कुलदीप, सुरुचि कश्यप, राधा वर्मा और दुर्गेश्वरी ने। अंडारनाथघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा ने। बीड़शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब कारवा ने। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष ने। अहमदपुर खैरगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली ने। अमरावती महाराष्ट्र से साहिद भाई, आसिफ परवीन, अल्फिया और शादाब सोफियान ने। पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज कुमार साहू, सुष्मिता साहू, दीपिका साहू, कोरासी भैसा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। धनौरी तेलीवाला से निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता। धांडी नांदूर महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति ने। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता पांडे, राम राजवाड़े। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल ने। डोगनगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। मेन बाजार कुंडलीवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमिकेर, प्रमोद और प्रदीप येमिकेर ने। बंगला मटिया बलो से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना और आशुतोष अंगारे। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालियानी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

ईमेल की गूंज में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डुडवानी ने। मेन रोड तेलाहारा से प्रकाश पोहराकर, नर्मदा और सुजाता पोहराकर ने। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और टप्पू ने। राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर, ग्राम पुतकी कला, कवर्धा छत्तीसगढ़ से। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल ने। छत्रपति संभाजीनगर, सूर्यवाड़ी, औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रांजलि, स्वरूपा, सोहम, सदानंद, विराज, नीरज, सुभाष, सदानंद, योगिता, सुवर्णा और आप सभी साथियों ने। ग्राम पंचायत खोनला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा ने। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी ने। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर ने। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले, सावतपुर से ऋषि सेन और रितेश सेन, गुन्नीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पेंटर विजय सिंह महोबिया, कविता, सपना, शिवी, सलोनी, ईशा बाबू। बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली ने। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुढ़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुढ़त, चेतन नाहटा ने। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत शारदा सिन्हा की आवाज़ में।

शारदा सिन्हा की गाई इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज आज यहीं तक। कार्यक्रम से अपने रेडियो साथी जयमाला को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। नमस्कार। मीडियम वेव

और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान का सरोद वादन राग स्वर समीर पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, जिसमें आपने सुना उस्ताद

अमजद अली खान का सरोदवा दिन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनभावन। कार्यक्रम में मैं आपकी साथी हूँ, आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बाजीगर के इस गीत के साथ, विनोद राठौर की आवाज़ में।

इस गीत के लिए हमें फरमाइश की थी सही टेकराम चौक हथबंद करेली से भाई रामधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजय कुमार ध्रुव ने। धूरा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर अभी हमने सुना फिल्म बाजीगर का ये गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म खलनायक का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी ने। बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा ने। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना सांवले और चारवी ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए SP बालासुब्रमण्यम के आवाज में फिल्म हम आपके हैं कौन का ये गीत। गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा ने। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर और ज्योति ठाकुर, साथ ही रेयांश ठाकुर ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदीया खान, आसमा, सालिया शोएब खान, मुस्तफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। तिवरता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम और जागेंद्र मरकाम ने। करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, दीपक, दीपा, चांदनी और कृति ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा एवं बीबी नाव्या सिंगरौल ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन का ये गीत। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है गांधी चौक रोपण पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्षर, हरिद्वार से। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या सारथी ने और साथ ही श्रीमती सुषमा सारथी ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, शीमा सारदा, दामिनी वर्मा। महाराज रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर लीजिए पेश है कार्यक्रम मनभावन की आज का ये आखिरी नगमा।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: श्रोताओं, अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमें कार्यक्रम मन भावन में अपने पत्रों द्वारा भी आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा पता है मन भावन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर 492001। इसी के साथ कार्यक्रम मन भावन आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने

0: तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitarakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुँच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल RN नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy. Foreign Secretary said, Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।